मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर एवं एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 28वीं तिथि तदनुसार 15 मई सन 2026 प्रातः के 5:58 और 38 सेकंड हुए हैं। इसी के साथ हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर, एवं एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। समाचारों के तुरंत बाद एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्ज पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले।

0: मद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू

0: कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान देना सबसे बड़ा धन है। ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हे ईश्वर, हमें इस नई सुबह के लिए धन्यवाद आपका। आज का दिन हमें अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दे, हमारे मन को शांत रखे और हमें सही मार्ग दिखाए, ताकि हमारे कार्य दूसरों के लिए भी हितकारी हों।

हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि दिन भर की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदान करें। हम सही गलत में भेद करने की क्षमता कर पाए।

हे ईश्वर, संसार में सुख शांति एवं संतोष व्याप्त करें। मेहनत तथा ईमानदारी से काम करने की लगन इच्छा शक्ति को ही ईश्वर आप हमारे अंदर बनाए रखें। हमें सद्बुद्धि दें, हमें सन्मार्ग दिखाएं।

वह शक्ति दो हमें दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप करें, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान।

वन गमन के लिए श्रीराम माता कौशल्या की आज्ञा और आशीर्वाद ले चुके हैं। उसी समय आकुल सीता वहां पहुंचती हैं। सास के चरणों की वंदना करके सिर झुकाकर वहां बैठ जाती हैं। पैर की अंगुलियों के नाखून से धरती कुरेदती हुई सोच रही हैं कि किस सुकर्म का फल उन्हें प्राप्त होगा। शरीर तथा प्राण दोनों पति के साथ जाएंगे या केवल प्राणों को ही उनका साथ प्राप्त होगा। उनके सुंदर नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पुत्र वधु की ये दशा देख माता कौशल्या उनके लिए सास ससुर और सभी कुटुंबियों के स्नेह और सद्भाव की चर्चा करती हैं। जिस सुकुमारी के पिता राजाओं के शिरोमणि जनक हैं, श्वसुर सूर्यवंश के सूर्य और पति सूर्य कुल के कमल को खिलाने वाले चंद्रमा के समान रूप और गुण के भंडार हैं, ऐसी रूप राशि और शीलवंती बहु को माता कौशल्या ने आंखों की पुतली के समान प्यार से रखा है। माता कौशल्या का श्रीराम से प्रश्न है कि सीता के लिए उनकी क्या आज्ञा है। क्या विधाता ने सीता को वन के कष्ट भोगने के लिए रचा है? सीता यदि घर ही रहें तो माता कौशल्या को बड़ा सहारा मिल जाएगा।

0: किसान बहन और भाइयों, राम राम भाइयों। कृषि की बात हम आज जिक्र करेंगे, मछली तालाबा की देखभाल इस बारे में। और देख ये है कि भाई अपना मई का टाइम चल रहा है, जेठ का महीना है, भाई गर्मी बहुत सी अधिक है, लेकिन अपना जो मौसम है इसमें भी काफ़ी फेर बदल आंदा रहे है। लगभग भाई कितने न कितने हल्की फुल्की बूंदाबांदी, तेज़ हवा, अंधड़, इन दिन में थोड़ा चल रहा है। तो भाई जड़ती ही बात आवे है गर्मी का टाइम में, चाहे वो मछली तालाब हो, चाहे भाई अपना कोई भी सहायक धंधा हो, चाहे पशुपालन का है, चाहे अन्य कोई है, तो देखो गर्मी में देखभाल बहुत सी करनी हमने पड़े है। और थोड़ी ही ये भी हो जाए है कि भाई बद भी जा है। तो थोड़ी ही जो मछली तालाबा की देखभाल का बात करी जाए, तो भाई एक तो हम ये देखे हैं कि हमारे पास तालाब कुछ जगह पर कौन सी पर है, कोई गांव का जोड़ पट्टे पर हमने ले रखा है, या फिर कोई अपने स्पेशल किले में खुद हुआ कि हमने मछली पालन कर रखा है, या फिर और कोई अन्य ऐसी जगह हो जड़े। तो इसमें एक तो सबसे ज़रूरी है कि भाई गर्मी के टाइम में तापमान थोड़ा बच गया है, तो पानी की जो तासीर है वह थोड़ी गर्म हो गया है, तो इसने भाई ऑक्सीजन पर्याप्त बनाए रखने खातर आजकल जो कुछ स्वचालित यंत्र हैं, कुछ लाइट ते चालन के हैं, कुछ अपना भाई पेट्रोल डीजल ते चालन के हैं, जो पानी उल्टा पलटी कर दे रहे हैं, तो उन तक यो है कि भाई अपनी जो ऑक्सीजन है वह पानी की मात्रा में पूरी भरपूर बनी रहे है, मछलियाँ कोई दिक्कत नहीं आंदी। और ये देखे हैं कि जब मछली ऊपर सतह पानी की सांस लेने लग जाए, तो ये मान की चालम ऑक्सीजन की कमी है, फिर हमने पानी भाई दोबारा पर्याप्त मात्रा में खड़ा भी रखना पड़ेगा, लगभग अपना 6-7 फीट के की गहराई में हम रखें, ताकि जो है पानी मछलियाँ दिक्कत नहीं आवे, ज़्यादा गर्म नहीं हुए। तो इस हिसाब से जो अपनी मछली हैं भाई, उनकी खुराक पूर्ति का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल संतुलित जो खुराक है वह हम अपनी मछली तालाबा में डालें, ताकि ज़्यादा डालने से दिक्कत भी आ जाए, क्योंकि मछली अपना जो है इतना खा ले है कि फिर उसने दिक्कत आवे है, मर गया हुआ। फिर अपने संतुलन की जो खुराक है वह हमने डालना नियमित तौर पर। और मछली तालाबा की भाई देखभाल का यो है कि पानी की जो गुणवत्ता है, ऑक्सीजन स्तर है, वो भाई सही भोजन बहुत ज़रूरी ही ने। पानी की गहराई भाई अपने 5 से 7 फीट तक ही हम रख सकें हैं इसमें। और अमोनिया कम करने के लिए भाई जल शोधक या फिर विषनाशक का प्रयोग हम कर सकें हैं। और ऑक्सीजन 6 से लेकर 8 PPM हमने बनाए रखनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भाई हमने एरेटर है या फिर पानी बदलने की व्यवस्था जो हवा करनी पड़ेगी भाई। इसके अलावा अपना जो तालाब प्रबंधन के कुछ खास जो प्रमुख है इन्हों देखे हैं कि भाई बातें ज़रूरी हैं, उसमें पानी का स्तर और गुणवत्ता, तालाबा में साफ पानी होना ज़रूरी है, पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भाई समय समय पर हमने पानी की जांच करवानी पड़ेगी, और अमोनिया व क्लोरो राई माइना जो अपना हटाने के लिए भाई विषनाशक का हम डिटॉक्सीफायर का उपयोग हम कर सके हैं। और ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो भाई इसमें मैंने कहे हैं अधिकांश मछलियाँ के लिए भाई पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर 6 से लेकर 8 PPM होना ज़रूरी है। भोजन प्रबंध है भाई, मछलियाँ ने हम संतुलित आहार देवा, छोटी मछलियाँ हैं या पलंगवक है, कीड़े हैं और लार्वा खाऊँ हैं, जबकि बड़ी मछलियाँ के लिए भाई कृत्रिम चारा जमने दिया जा सके है। बीज डालने की अगर बात आवे है तो भाई इसमें ये देखे हैं कि तालाबा में बीज डालने से पहले उन्हें पोटाशियम पर मैगनेट के हल्के घोलते हैं स्नान हम करवा लें, जिससे संक्रमण जो हो कम हो जावे। गहराई में ये देखे हैं कि मिश्रित मत्स्य पालन के लिए भाई तालाब की गहराई कम से कम भी 5-6 फीट होनी ज़रूरी है, तो हमने फायदा इसका मिल पाओगा। और ये देखे हैं कि भाई मछलियाँ ने भरपूर अपनी जो पलंग टांग है और उनका हमने देखभाल रखनी बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई बिल्कुल रखे, कोई मछली का दिक्कत आओ है तो उसने हम अलग से थोड़ी बहुत उसने डाल सकें, ताकि पूरा तालाब में जो है बीमारी ना फैलने पावे। तो बहुत सी बातें इसमें ही आ जाए हैं कि भाई देखभाल की है, फीड की है, या फिर कोई प्रशिक्षण के दौरान हम इसने काम न करें, ताकि थोड़ी बहुत हमारे पास बशर्ते कोई ट्रेनिंग वगैरह कोई भाई करे या उसका हम जाँच परख लेवें, जब जाके हर एक काम में सफलता मिल पाओगी। तो आज भाइयों कृषि की बातों में इतना ही। आपका दिन शुभ हो।
1: ये थी कृषि की बातें। आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। उसके बाद 7 समाचार होंगे हिंदी में। तत्पश्चात 7:05 पर समाचार होंगे अंग्रेजी में, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन, नार्वे, इटली देशानां षड् दिवसीय यात्रायां भविष्यति। पञ्चदेशयात्रायाः प्रथमपदे अद्य श्रीमोदी यूएई देशं गमिष्यति, यत्र सः राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति। द्विपक्षीय विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकार्ये तथैव परस्पर हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च द्वौ नेतारौ विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। मेलनमिदं ऊर्जा सुरक्षा विषये केन्द्रीकृतं भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायां ब्रिक्स इति बहुदेशीय संघः बहुपक्षीयतां सुदृढं कर्तुं, सतत विकासं प्रवर्धयितुं, आर्थिक शक्तिं प्रवर्धयितुं, अधिक समावेशीय विश्वव्यवस्थायाः निर्माणार्थं च मिलित्वा कार्यं करिष्यति। ह्यः नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां विदेशमन्त्रिभिः प्रतिनिधिमण्डलप्रमुखैस्सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् उदयमानानां अर्थव्यवस्थानां मध्ये सहकार्यं प्रवर्तयितुं वैश्विकदक्षिणस्य आकांक्षाणां विकासाय च ब्रिक्स संघः महत्वपूर्णमञ्चरूपेण उद्भूतः वर्तते। केन्द्रसर्वकारेण उक्तं यत् देशे पर्याप्तम् असंस्कृततैलस्य एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल ईंधनस्य प्राकृतिक अनिलेंधनस्य च उपलब्धतां सुनिश्चेतुं प्रभावी पदानि गृहीतानि सन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां अन्तर्मन्त्रालयस्य वृत्तान्तस्य समये पेट्रोलियम प्राकृतिक अनिल मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिव पदासीना सुजाता शर्मा अवदत् यत् देशे सर्वत्र गृहोपयोगी एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल ईंधनस्य आपूर्तिः सुचारुरूपेण प्रचलति। नीट इति आगामी राष्ट्रीय पात्रता सहित प्रवेश परीक्षायाः सज्जतायाः समीक्षां कर्तुं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानस्य निवासस्थाने उच्चस्तरीय सभा आयोजिता। सभायां नीट परीक्षायाः सुचारुतया कुशलतया च संचालनस्य विविध पक्षेषु विस्तृत विमर्शाः कृताः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य आंध्रप्रदेशस्य श्री सत्यसाई मण्डलस्य पुट्टपर्ति इत्यत्र अनेक वैमानिक रक्षा परियोजनानां आधारशिला स्थापन कार्यक्रमे भागं गृहीष्यति। रक्षामंत्रालयेन उक्तं यत् विमान विकास संस्थायाः विमान समायोजनस्य उड्डयन परीक्षण केन्द्रस्य च शिलान्यासः भविष्यति। विमानस्य एकीकरणस्य परीक्षणस्य प्रमाणीकरणस्य च एषा परियोजना उन्नत मध्यम युद्ध विमान कार्यस्य विकासं त्वरयिष्यति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य महाराष्ट्रस्य सतारा इत्यत्र प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनायाः लाभार्थी सम्मेलने एवं महाराष्ट्र आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोहे च भागं गृहीष्यति। उत्तरप्रदेशे विगत 37 होरासु झंझावात चक्रवात विद्युत्पातादिभिः सह अतिवृष्टिकारणात् न्यूनातिन्यूनम् 11,100 जनाः मृताः, 200+ जनाः वृणिताः सन्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जिलाधिकारीं तथा संबंधित अधिकारिणः शीघ्रतया घटनास्थलं गत्वा सर्वेक्षणं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्। उधमपुरा मंडलस्य शिवपार्वती तीर्थे ऐतिहासिकः त्रिदिवसीया शिवपार्वती मेला इति प्रसिद्धा वार्षिक मौंगरी मेला अद्य आरभ्यते। धार्मिकोत्साहस्य उत्सवस्य च भावनायाः मध्ये उधमपुरा मंडल प्रशासनेन मौंगरी इत्यत्र सर दब्बर क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिक मेलायाः सज्जता कृता वर्तते। केन्द्रसर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते 100 kg परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति। अग्रिमप्राधिकरणयोजनायाः अन्तर्गतम् आभूषणनिर्यातकाः शून्य शुल्केन असंस्कृत वस्तूनां अथवा निवेश सामग्रीणां आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति। IPL इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं षट् स्तोभकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्ध सप्तवादने लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
4: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टुपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह अनकापल्ली जिले के टी सिरसापल्ली गांव में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की नई अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली निर्माण सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अनिल धीरूभाई अंबानी ADA समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों में तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम मंजूरी योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की

घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में भी हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। भारत की वुशू खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुंग गोंगा को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशू को ताउलो और सांडा में दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शाम 6:20 पर कार्यक्रम कृषि जगत में आप तक पहुंचेगा पशुपालन संबंधी समस्या व सुझाव विषय पर फोन इन कार्यक्रम का प्रथम प्रसारण। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर छज्जू राम चौधरी।

कार्यक्रम फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे रात 7:30 पर। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर प्रसारित होगा दोपहर 1:10।

0: प्रातः 9 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम प्रसारित होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT एपिसोड संख्या 1285। अब से कुछ ही देर में 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गांधी चर्चा में मित्रता विषय पर गांधी जी के विचार। ये थी कार्यक्रम रूपरेखा आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा। गांधी चर्चा में आज आपको सुना रहे हैं मित्रता विषय पर गांधी जी के विचार। प्रस्तुति करता है यज्ञदत्त मिश्र।
1: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है गांधी चर्चा।

मित्रता में अद्वैत भावना होती है। ऐसी मित्रता दुनिया में बहुत कम देखने में आती है। मित्रता समान गुण वालों को ही शोभती है और निभती है। मित्रों का एक दूसरे पर असर पड़े बिना नहीं रह सकता, इसलिए मित्रता में सुधार की गुंजाइश बहुत थोड़ी होती है। मेरा मत है कि अंतरंग मित्रता अनिष्टकारक है, क्योंकि मनुष्य दोष को बड़ी जल्दी अपनाता है। गुण ग्रहण करने में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। आत्मा और ईश्वर की मित्रता की चाह रखने वाले को एकाकी रहना चाहिए या फिर अखिल विश्व के साथ मैत्री करनी चाहिए। ये विचार ठीक हो या बेठीक, इतना सही है कि मेरा व्यक्तिगत मित्रता संपादन का प्रयास निष्फल रहा। हाई स्कूल में मेरे थोड़े ही खास मित्र थे। मित्र कहे जा सकने वाले ऐसे मेरे दो मित्र भिन्न भिन्न समयों में थे। एक मित्रता तो दूर तक नहीं निभी, यद्यपि मेरी ओर से उस मित्र का त्याग नहीं हुआ। मेरे दूसरे का साथ करने के कारण पहले ने मुझे छोड़ दिया। दूसरा साथ मेरे जीवन का दुखद अध्याय है। ये संग बहुत वर्षों तक चला। उस मित्रता में मेरी सुधारक दृष्टि थी। पहले उस साथी की मित्रता मेरे मंझले भाई से थी। वह मेरे भाई का सहपाठी था। उसमें कई दोष थे जिन्हें मैं देख पा रहा था, पर मैंने उसे सच्चा वफादार माना था। माताजी, बड़े भाई और मेरी धर्मपत्नी, तीनों को ये संगत बुरी लगती थी। पत्नी की चेतावनी की तो मुझ जैसा घमंडी पति कब परवाह करता था। हाँ, माताजी की आज्ञा का उल्लंघन कर सकना मेरे लिए कठिन था। मेरे भाई की सीख भी सुननी ही थी। पर यह कहकर मैंने उन लोगों को तसल्ली करा दी, आप लोग उसके जो दोष बताते हैं उन्हें मैं जानता हूँ। आप लोगों को उसके गुणों का पता नहीं है। मुझे वह गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैंने उसका साथ सिर्फ उसे सुधारने की नीयत से किया है। मेरा विश्वास है कि वह सुधर जाए तो बड़ा अच्छा आदमी निकलेगा। मेरी प्रार्थना है कि आप लोग मेरे बारे में बेफिक्र रहें। मैं यह तो नहीं मानता कि इन बातों से उनका समाधान हो गया, पर उन्होंने मेरा विश्वास किया और मुझे अपनी राह जाने दिया। मुझे आगे चलकर मालूम हुआ कि मेरा अनुमान सही नहीं था। सुधार करने के लिए भी आदमी को गहरे पानी में नहीं उतरना चाहिए। हम जिसका सुधार करना चाहते हों उसके साथ मित्रता नहीं चल सकती। अभी आपने मित्रता विषय पर गांधी जी के विचार सुने, और अब प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन।

0: इसके साथ ही गांधी चर्चा का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न हुआ।
1: गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे मित्रता विषय पर गांधी जी के विचार, प्रस्तुतिकर्ता थे यज्ञदत्त मिश्र। आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

सुबह सवेरे कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आप सभी को आपकी रेडियो साथी सोनिया शर्मा का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं इस गीत के साथ।

भारतीय स्वाधीनता संग्राम में सुखदेव थापर एक ऐसा नाम जो न सिर्फ अपनी देशभक्ति, साहस और मातृभूमि पर कुर्बान होने के लिए जाना जाता है, बल्कि शहीद आज़म भगत सिंह के अनन्य मित्र के रूप में भी इनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कला एवं संस्कृति मंच ठाकुरगंज द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान स्वतंत्रता सेनानी एवं भगत सिंह और राजगुरु के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटकने वाले अमर शहीद सुखदेव थापर जी की जयंती आज हम मना रहे हैं। सुखदेव का भारत के उन क्रांतिकारियों में नाम गिना जाता है जिन्होंने कम उम्र में देश के लिए शहादत दी थी। इनका जन्म आज के ही दिन यानी 15 मई वर्ष 1907 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे सुखदेव एक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी थे। इन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को मजबूत किया। ये एक उत्कृष्ट संगठनकर्ता और विचारक थे। इन्होंने युवा क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। शहीद आज़म सुखदेव थापर जी की जयंती पर इन्हें शत शत नमन। राष्ट्र के लिए आपका बलिदान अमर है। फांसी के फंदे को चूमकर जिसने देश को आज़ादी का पैगाम दिया, ऐसे वीर सपूत सुखदेव जी को कोटि कोटि नमन। क्रांति की मशाल जलाने वाले महान क्रांतिकारी सुखदेव थापर जी की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं विश्व परिवार दिवस। 15 मई को यानी आज के ही दिन मनाया जाता है। प्राणी जगत में परिवार सबसे छोटी इकाई है, या फिर समाज में भी परिवार सबसे छोटी इकाई है। यह सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई है। परिवार के अभाव में मानव समाज के संचालन की कल्पना भी दुष्कर है। प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी हो, किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है या फिर है। उससे अलग होकर उसके अस्तित्व को सोचा नहीं जा सकता। हमारी संस्कृति और सभ्यता कितने ही परिवर्तनों को स्वीकार करके अपने को परिष्कृत कर ले, लेकिन परिवार संस्था के अस्तित्व पर कोई भी आंच नहीं आई। वह बने और बनकर भले टूट गए हों, लेकिन उनके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। इसके स्वरूप में परिवर्तन आया और उसके मूल्यों में परिवर्तन हुआ, लेकिन उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। हम चाहे कितनी भी आधुनिक विचारधारा में आज हम पल रहे हों, लेकिन अंत में अपने संबंधों को विवाह संस्था से जोड़कर परिवार में परिवर्तित करने में ही संतुष्टि अनुभव करते हैं। विश्व परिवार दिवस हम क्यों मना रहे हैं आज, इसके अगर इतिहास की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने वर्ष 1994 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष घोषित किया। समूचे संसार में लोगों के बीच परिवार की अहमियत बताने के लिए हर साल आज के ही दिन को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाने लगा है। वर्ष 1995 में यह सिलसिला जारी है। परिवार की महत्वता समझाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन के लिए जिस दिन प्रतीक चिन्ह को चुना गया, उसमें हरे रंग के गोल घेरे के बीचों बीच एक दिल और घर अंकित किया गया है। इसे स्पष्ट है कि किसी समाज का केंद्र परिवार ही होता है। परिवार की हर उम्र के लोगों को सुकून पहुंचाता है। जी हाँ, माता के साथ पुत्र एक मन वाला हो, पत्नी पति में मधुर या कोमल शब्द होते हैं। परिवार कुछ लोगों के साथ रहने से नहीं बनता, इसमें रिश्तों की मजबूत डोर होती है, सहयोग के अटूट बंधन होते हैं, एक दूसरे की सुरक्षा के वादे और इरादे होते हैं। हमारा यह फर्ज है श्रोताओं कि इस रिश्ते की गरिमा को हम बनाए रखें। हमारी संस्कृति में, परंपरा में पारिवारिक एकता पर हमेशा से बल दिया जाता रहा है। परिवार एक संसाधन की तरह होता है। परिवार की कुछ अहम जिम्मेदारियां भी होती हैं। इस संसाधन के कई तत्व भी होते हैं। परिवार में रहकर हमें सबका ख्याल रखना होता है। वर्ष 2026 के आयोजन का जो विषय है, अगर हम बात करें, थीम की बात करें, तो परिवार, असमानताएं और बाल कल्याण इस बात पर जोर देता है कि बढ़ती असमानताएं पारिवारिक जीवन को कैसे आकार दे रही हैं और बच्चों के भविष्य को कैसे प्रभावित कर रही हैं। यह असमानताओं को कम करने और स्वस्थ बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत परिवार केंद्रित नीतियों में अधिक निवेश का आह्वान है। परिवार सामाजिक और आर्थिक प्रगति के केंद्र में है, फिर भी कई परिवारों को आय की असुरक्षा, सीमित देखभाल सहायता, आवश्यक सेवाओं तक असमान पहुंच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर्याप्त सहायता के अभाव में छोटे बच्चों वाले परिवारों में गरीबी का खतरा बढ़ जाता है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र कल्याण पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। श्रोताओं, परिवार, विश्व परिवार दिवस जो है, परिवार मर्यादाओं की अगर बात करें तो परिवार मर्यादाओं से बनता है। परस्पर कर्तव्य होते हैं, इसमें अनुशासन होता है और उस नियत परंपरा में कुछ जनों की इकाई हित के आसपास जुड़कर व्यूह में चलती है। उस इकाई के प्रति हर सदस्य अपना आत्मदान करता है। इज्जत और खानदान की होती है, हर एक उसमें लाभ लेता है और अपना त्याग देता है। तो हमें अपने परिवार का बखूबी ध्यान रखना चाहिए। जो बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए, बड़ों का आदर सम्मान करते हुए अपना जीवन यापन हमें करना चाहिए।

जय जय प्यारे देश हमारे, तीन लोक में सबसे न्यारे, हिमगिरी मुकुट मनोहर धारे, जय जय सुभग सुवेश, जय जय प्यारे देश हमारे। हम बुलबुल तू गुल है प्यारा, तू सुम्बुल तू देश हमारा, हमने तन मन तुझ पर वारा, तेज पुंज विशेष, जय जय प्यारे देश हमारे। तुझ पर हम निसार हो जावें, तेरी रज हम शीश चढ़ावें, जगत पिता से यही मनावें, होवे तू देश, जय जय प्यारे देश हमारे। जी हाँ, ये पंक्तियाँ हैं उस कवि की कविताओं की जो आधुनिक हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ और खड़ी बोली को परिष्कृत करने वाले महान युग प्रवर्तक थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, जिनकी जयंती आज हम मना रहे हैं। इनका जन्म वर्ष 1864 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में दौलतपुर में हुआ था। इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य और पद्य के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई। इन्होंने हिंदी भाषा को व्याकरणिक रूप से शुद्ध किया और उसे आम बोलचाल यानी खड़ी बोली के करीब वो इसे लेकर आए। वर्ष 1903 से 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, जिसने हिंदी साहित्य में एक नए युग की शुरुआत की। इन्होंने न केवल कविताएं लिखी बल्कि निबंध, आलोचना और अनुवाद के माध्यम से साहित्य के विभिन्न अंगों को समृद्ध किया। इनकी पद्य रचनाओं के बारे में अगर हम आपको बताएं तो वर्ष 1900 में नागरी, काव्य मंजूषा वर्ष 1903 में, सुमन वर्ष 1923 ईस्वी में, कविता कलाप वर्ष 1909 ईस्वी में, गद्य रचनाओं में वैज्ञानिक कोश 1906 ईस्वी में आई। हिंदी भाषा की उत्पत्ति वर्ष 1907 में, कौटिल्य कुठार वर्ष 1907 में, कालिदास की निरकुंशता वर्ष 1912 में, अतीत स्मृति, साहित्य संदर्भ, आध्यात्मिकी, साहित्य लाभ, विग विनोद, कोविद कीर्तन, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। श्रोताओं, आचार्य द्विवेदी जी को इनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा, क्योंकि इन्होंने हिंदी नवजागरण में भी मुख्य भूमिका निभाई। इनकी जयंती का दिन हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति इनके समर्पण को याद करने का अवसर है।

ज़िंदगी के हर पल को खुशी से सजाना सीखो, दुख तो मेहमान हैं, हंसकर उसे बिताना सीखो। क्या रखा है उलझनों में, क्यों बेवजह रोते हो? जो बीत गया वो सपना था, क्यों याद उसे करते हो? कल को किसने देखा है, आज में ही जीवन है। खुश रहो, खुशियाँ बांटो, यही तो असली दर्शन है। तो श्रोताओं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। और इसी के साथ अपनी रेडियो साथी सोनिया शर्मा को दीजिए अनुमति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात 8:15 पर समाचार होंगे अंग्रेजी में, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्तिकर्ता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से LNG तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम

0: डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों

0: लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्रिपरिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रन।
1: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालेंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: फरद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, NTA का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52 kg category in Sander World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said, energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's 4th largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. According to him, India is now the largest buyer of LNG from the UAE. The UAE also supplies nearly 40% of India's liquefied petroleum gas imports and remains a significant destination for Indian petroleum exports. Our correspondent has filed this report.
5: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supplier to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation. Earlier this year, Hindustan Petroleum signed a 10-year deal with Abu Dhabi National Oil Company for 500,000 tons of LNG annually beginning 2028, giving India greater price stability by reducing its reliance on spot markets. Renewable energy and civil nuclear cooperation are also gaining ground. UAE sovereign wealth funds are actively investing in India's solar infrastructure, while India's Shanti Act, which opens the nuclear sector to private players, has created fresh scope for collaboration in reactors, including small modular reactors. Both sides are pushing to settle energy transactions in rupees and dirhams, reducing dollar dependencies in bilateral trade. From oil to LNG, clean energy to nuclear, the India-UAE energy partnership is being redrawn for a decarbonizing world. Vinod Kumar for Akashwani News from Abu Dhabi.
4: On the occasion of the Prime Minister's 8th visit to the Emirates, Indian Ambassador to the UAE, Deepak Mittal, said the visit of the Prime Minister is highly opportune.
6: UAE has emerged as a very close 3rd largest trade partner for India. Our bilateral trade has crossed $100 billion after we have signed Comprehensive Economic Partnership Agreement in 2022. The visit of the Prime Minister is very opportune, happening at a time when the region is going through some unprecedented times. The Prime Minister has been in touch with the UAE leadership. So this is a moment when it will help and enable to express our solidarity.
4: Meanwhile, UAE's Minister of State for International Cooperation, Reem Binte Ibrahim Al-Hashmi, has said the government is looking forward to the occasion with great excitement. She said that Mr. Modi is a key figure of friendship, of long-standing partnership, and a true treasure to the leadership and to the people of the UAE. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi, the Prime Minister said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. Earlier in his opening remarks at the BRICS foreign ministers' meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
7: There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation.
4: Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, and Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi, among others, are attending the meeting. Oil companies have raised the petrol and diesel prices by 3 rupees per litre each amid spike in global energy prices. Petrol price has risen from 94.77 rupees to 97.77 rupees per litre, while diesel prices have increased from 87.67 rupees to 90.67 rupees per litre in New Delhi. Similarly, petrol prices in Mumbai will now cost 106.68 rupees per litre, while diesel price has been hiked to 93.14 rupees per litre. In Kolkata, petrol price has been increased to 108.74 rupees per litre, while the diesel price will now be 95.13 rupees per litre. In Chennai, petrol price has been raised to 103.77 rupees per litre and diesel price has been increased to 95.35 rupees per litre. The government has imposed a limit of 100 kgs on gold imports under the Advanced Authorization Scheme, which allows jewellery exporters to import raw or input materials at zero duty. In a public notice, the Director General of Foreign Trade, DGFT, said, advance authorization for import of gold shall be issued, subject to a maximum permissible quantity of 100 kilograms. A report.
8: The DGFT has mandated a physical inspection of manufacturing facilities for all first-time applicants to verify their operational status and capacity. It added that any subsequent advance authorization for the import of gold shall be considered for issuance only upon fulfillment of at least 50% of the export obligation. The DGFT further said that the concerned regional authority of the directorate will submit a monthly report to the DGFT containing details regarding the issuance of advance authorization. Earlier, there was no limit on gold imports under the scheme. The advance authorization scheme allows the duty-free import of inputs that are incorporated into an export product. With Ankita Nakshit, Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
4: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at TIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to Morning News. The Enforcement Directorate or ED has arrested Kolkata Police Deputy Commissioner Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. The ED questioned him at the CGO complex in Kolkata yesterday morning after he appeared before the agency. Biswas was arrested after being interrogated for more than 10 and a half hours. He will be produced before a court today. ED had summoned Biswas, former officer in charge of Kalighat Police Station, several times for questioning as part of its money laundering investigation into an alleged criminal-linked syndicate run by Shona Pappu alias Bishwajit Poddar. However, he had repeatedly skipped the summons. A high-level meeting was held at the residence of the Union Education Minister Dharmendra Pradhan yesterday evening to review preparations for the upcoming National Eligibility Cum Entrance Test or NEET examination. Detailed discussions were held on various aspects of conducting the NEET exam smoothly and efficiently. In Keralam, the new UDF government will be sworn in on Monday. More from our correspondent.
9: VD Sadeshan will be sworn in as the Chief Minister of Kerala on Monday. UDF sources in Thiruvananthapuram informed that the entire ministry will be sworn in along with the Chief Minister at the same time. Intensive discussions are continuing among the constituent parties of the UDF regarding the new ministers and their portfolios. It may be noted that the decision on the Chief Minister was taken only after 10 days of continuous discussions in Thiruvananthapuram and New Delhi following the election results on May 4.

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: लोक संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कलाकार दीपचंद को।

इसी के साथ हमारा आज का लोक संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है, जिसमें हमारे आज के कलाकार थे दीपचंद। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रातः के 9 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक रंग। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कुरुक्षेत्र फिल्म के इस गीत के साथ। इस गीत को आवाज़ें दी हैं कुमार सानू और अलका याग्निक ने। शब्द रचना है देव कोहली की, संगीत बद किया है हिमेश रेशमिया ने।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वर में मोहरा फिल्म से गीत आप सभी को सुनवा रहे हैं। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है विजू शाह ने।

मोहरा फिल्म से अभी आपने गीत सुना। जीना सिर्फ मेरे लिए फिल्म का शीर्षक गीत आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को आवाज़ें दी हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो ने। समीर के बोल हैं नदीम श्रवण ने संगीतबद्ध किया है।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में तेरे नाम फिल्म का शीर्षक गीत आपको सुनवा रहे हैं। समीर के बोल हैं, हिमेश रेशमिया ने संगीतबद्ध किया है।

हरी हरन की आवाज़ में यादें फिल्म से अभी आपने गीत सुना। माफ़ कीजिएगा, आपको गीत सुनवा रहे हैं यादें फिल्म से हरी हरन की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत बद किया है अनु मलिक ने।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मिस्टर आशिक फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को आवाजें दी हैं कुमार सानू और अलका याग्निक ने। इंदीवर के बोल हैं, संगीत बद किया है जतिन ललित ने।

मोहम्मद अजीज़ और साधना सरगम की युगल स्वर में त्रिदेव फिल्म से गीत हैं। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।

कुमार सानू और चित्रा की आवाज़ में विरासत फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और धुन तैयार की है अनु मलिक ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं कोई मिल गया फिल्म से। इस गीत को आवाज़ें दी हैं उदित नारायण और चित्रा ने। शब्द रचना है इब्राहिम अश्क की, संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

आज तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी

मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30 और 24 सेकंड हुए हैं। हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।

0: संबंध सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश।
3: और मैं अजीत। नमस्कार। राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
3: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओं, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
3: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव ओगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
3: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
3: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है, तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
3: बिल्कुल।
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
3: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
3: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
2: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ? कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
3: जी, और हाँ श्रोताओं, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहां NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
2: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
3: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
2: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
3: जैसे
2: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
3: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियाँ खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
2: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियाँ भी कर सकते हैं,
3: जैसे
2: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
3: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
2: तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
3: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-440-559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
2: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है, और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
4: अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। उन्हें मैं था कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थातू बुलाती हूँ। कभी कभी थातू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थातू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाता खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
5: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
4: थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थातू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थातू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थातू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थातू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
5: अब सो जाओ।
4: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थातू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
2: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
3: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई? हाँ।
2: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 1/6 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
2: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
2: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए

0: आर जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि यह युद्ध आसान नहीं होगा।
1: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं, वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
2: जी सुबेदार साहब।
1: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
2: जी सुबेदार साहब।
1: बोले सोनिहाल।
2: सत श्री अकाल।
3: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
5: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल का।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी

0: अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
1: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
0: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
1: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
0: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों पक्षों द्वारा तेल भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिन इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के 2 दिन को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के 2 दिन

ये था अग्नि साक्षी फिल्म का गीत, बाबुल सुप्रियो और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ें आपने सुनी। समीर के बोल थे, संगीत नदीम श्रवण का। पसंद आप सभी की थी। आप हैं मोहला हिसार से राजकुमार ढोचक, गीता मनसानिया, सुभाष, ऊषा, राहुल, रोहित, जोगेंद्र, दर्शना, इंदु, यक्षित, समडील नवापारा से, मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति गुप्ता, राधे, दीपक, अंकुर, राघव, कर्मपुरा नई दिल्ली से एक खत है, कविता गौरव मानसी, अनिल मदान का, फुल चिंचोली पंढरपुर महाराष्ट्र से, जाकिर मुलानी, सुमैया, सुभान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर सुलेमानी, हरगोविंद नगर नवाशहर से सुरेंद्र संधु, अनीता रोहित, रितेश, प्रीतिशा संधु और मैक्स संधु, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, शेरड़ा से मंटू शर्मा, सोनू शर्मा, सुशीला, लीलाधर, वाराणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्वनी माई इंदुरकर, शौर्या श्रेयस, अंकिता, अनिकेत चौहान, कैथल से मधु नायक, पहाड़गंज से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और भिवानी से जितेंद्र खेड़ा। और अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सुनने वालों की पसंद पर। आप हैं बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, हिसार से राजेंद्र सैनी, राहुल सैनी, अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शुएब खान, मुस्तबा, रऊफ भाई शाहिद, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, फतेहाबाद से बिट्टू मोहरवाला, गगन अमरपुरी, युवराज भोविक, भड़बुंजी आगर से रघुनाथ मालवीय, भंवरबाई, सुषमा पुष्पा, ममता मंजू, बबीता राधा, सरिता दुर्गा, श्यामबाबू, भावना मधुबाला, मिलन उमंग, आयुष ओम प्रकाश, जरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू, चरखी दादरी से जगनेश सांगवान, करनाल से आप हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन, प्रतिभा, ईशप्रीत शर्मा, सोनिया कालका, विपाशा शर्मा, नरेंद्र, मीनाक्षी तिवारी, किरण ठाकुर, जग्गी दुआ, प्रेमलता, सुनीता शर्मा। और लोहारू से आप हैं बिल्लू चिंडालिया, लक्ष्मी, सुरेंद्र, बरखा, योगेंद्र चिंडालिया और नरेंद्र आपके साथ हैं। आप सभी ने सुनना चाहा है आईना फिल्म का गीत, जोली मुखर्जी और लता मंगेशकर की आवाज़ें आप सुनेंगे। समीर के बोल हैं, संगीत है दिलीप सेन, समीर सेन का।

आईना फिल्म का गीत जोली मुखर्जी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में था। और अब लव 86 फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज़ और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में गाया हुआ सुनते हैं। संतोष आनंद के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सभी की है। आप हैं धामणी मानोरा वाशिम से, तुलसीराम डेरे, माया संदेश, आदेश, किरण, प्रज्वल, अनुत डेरे, शब्बीर भाई, चंद्रकांत पाटिल, अमोल दादुल्या, मायावती डेरे, गुलशन नितिन, किशन वायले, आकाश ढोले, ध्रुवगिरी, ज्योति तेजस, प्रणीता मंगेश पाटिल, अरुण कोल्हे, परमेश्वर टिकाले, बाला खाड़े, गुंडी मानोरा वाशिम से, वच्चला भाई खिराड़े, चंदाबाई नगराले, सोमठाणा मानोरा से, डॉक्टर विशाल, ललिता पायल, आरुष कवाणे, तुलसीराम कवाणे, तुकाई राम, नीलू राउत, शेखर सोनोने, पीयूष कवाणे, रहमानी मानोरा से संजीदा बानो खान, साइमा खान, बुशरा खान, शब्बीर, सोमठाणा मानोरा से, डॉक्टर विशाल, ललिता पायल, आरुष कवाणे, तुलसीराम कवाणे, तुकाई राम, नीलू राउत, शेखर सोनोने, पीयूष कवाणे, रहमानी मानोरा से संजीदा बानो खान, साइमा खान, बुशरा खान, शब्बीर,

मटोर से राम दिया नीलम अजय विजय तमन्ना पायल रामफल धर्मवीर डोंडी लुहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया आरती तुषार डोली पूजा प्रभा देवी बन बघेरा राजनाथ गांव से योगेश सारवा आशा नीरज नीलेश अंजलि जाखोद से शंभुदयाल खटक बिमला अमरजीत सुंदरलाल योगेश दीपक पूजा कोंडागांव से सुभाष चक्रधारी कविता मुस्कान अनुष्का चक्रधारी शालर पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मेहरुजुद्दीन केसरदीन नजमदीन भिलाई से अशोक श्याम कुंवर दीपक प्रमिला और ज्योति। आप सभी के लिए ऊंचे लोग फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार और सलमा आगा की आवाज़ें आप सुनेंगे। आर डी बर्मन का संगीत है, गीत है अनजान का।

ऊंचे लोग फिल्म का गीत आपने सुना, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, माफ़ कीजिएगा, सलमा आगा और साथियों की आवाज़ों में। फिर से आपको बता देते हैं, किशोर कुमार, सलमा आगा और साथियों की आवाज़ें आपने ऊंचे लोग फिल्म से सुनी। आर डी बर्मन का संगीत और गीत था अनजान का। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध

ये था पति पत्नी और तवायफ फिल्म का गीत, सलमा आगा और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ें आपने सुनी। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हीर रांझा फिल्म से, लता मंगेशकर और अनवर की आवाज़ें आप सुनेंगे। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सभी की आप हैं। चांडूर बिस्वा बुलढाणा से, नारायण भाऊ खड़ से, रक्षाताई पुणे से, पंकज वाड़ोदे आर्या आदि, शैलेश सोनम धनुषपुरी बीटी बड़ोदे, जरूर वरुड़ महाराष्ट्र से, बाबा साहेब मीनाक्षी चरपे चंद्र प्रभा वाड़ोदे, रजनी कानीरे कार्तिक युवराज, वरुड़ जौलका महाराष्ट्र से, महेंद्र सरकरे विजया मिलिंद सरकरे, निमुलतानगर नई दिल्ली से सुरेंद्र खुराना, सुमित सुरभि अनिता खुराना, राजीव ढिंगरा कन्हैयालाल, शेरगढ़ मलोट से बलराज राम कालवा,

0: Badminton duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami with 21-12, 21-13 in Bangkok today. Later in the day, Lakshya Sen will face Thailand's Kunlavut Vidithsarn in the men's singles quarterfinals. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Chennai Super Kings at Ekana Stadium in Lucknow this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Earlier, Mumbai Indians defeated Punjab Kings by 6 wickets at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Tilak Verma was adjudged player of the match. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discuss energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchange key MOUs in defence, petroleum and investments. BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NETUG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Rotindra Bosho elected new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की दोनों नेताओं के बीच रक्षा पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया ये किसी भी रूप में स्वीकार करना ही है इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विजन का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय राष्ट्रीय एकता सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है होर्मुज को फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
3: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
5: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
6: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
7: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
8: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
1: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप खेत खलिहान कार्यक्रम सुनेंगे।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम सुननिए सारे बण भाइयों ने दलजीत भाई की। राम राम। किसान भाइयों, ईब गर्मी का मौसम आ गया सही तसल्ली का। तेज धूप पड़न लग रही है और मौसम का जब जिक्र करा जो पूरा अनुमान है तो ईब कई दिन तक और तेज धूप पड़ेगी। तापमान और बढ़ने की आशंका है। जो ईब हाल में चल रहा है तो एक दो दिन के बाद और तेज तापमान हो जाएगा, ज़्यादा गर्मी बन जाएगी। तो इस गर्मी को देखते हुए और जो बारिश की हम बाट देखा इस टाइम पर, थोड़ा सा ईब मन यूँ रख लें कि भाई बारिश नहीं होगी, जब आगे ज़रूरत पड़ेगी तो उस टाइम पर ठीक ठाक बारिश हो जाए, या एक ध्यान में हमारे बात रहो, या एक कामना भगवान तुम्हारी रहे होगी। लेकिन जो हाल में जो फसल हमने बो रखी है, एक आध फसल इसी भी बो रखी है, चारा खातर भी आगे पशुआन चारा मिल जाए, कुछ ईसा भी आगे हरी खाद की खातर ढेंचे की बजाय भी कुछ भाइयों ने कर ली होगी, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ढेंचे तक का जो फसल है उसमें भी सिंचाई की जरूरत पड़ेगी इस तरह के मौसम को देखते हुए। थोड़ी बहुत बारिश हो जाए करे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आया करती, लेकिन ईसा मौसम है तो उसमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही पानी देवांगे तो एक दिन मुश्किल तक काम चलेगा, दो दिन चलेगा, तीन चार दिन के बाद देखेंगे तो जमीन बिल्कुल सफ़ेद हो जाए और सूख जाए सारा पानी, क्योंकि इतनी तेज़ जब धूप पड़ेगी तो उसमें पानी कितने दिन ठहर पाओगा। तो मौसम का हिसाब देखकर अपनी जो फसल है उनका काम हमने करना है। बाकी अगली फसल की जो रूपरेखा है वो दिमाग में हमने रखनी है। अगली फसल जिन भाइयों ने भाई धान की लगानी है वो अपना प्योद की तैयारी रखें, खेत का बाणा संवारना एक सा करना, यू ही मौका है, खेत ने एक सा कर लें, एक सार खेत हो जाएगा, अगली फसल में दिक्कत नहीं रहेगी। मान लो धान की फसल बो दी, धान की फसल में 10-12 जिसे पानी आने हैं उन मजे किते का ऊंचा किते का नीचा, और जब फिर पानी देने पड़ेगा तो समस्या बन जाएगी। अगर खेत एक सा है तो थोड़े पानी में काम चल जाएगा। ईबियाँ कंप्यूटर की गोड़ी आ रही हैं, थोड़ी सी महंगी तो पड़ेंगी, इस बात में मानेंगे हम, खर्चीला है ये सौदा, लेकिन जो खर्चा करें है ना उतना मुनाफा हो गया है। यो भी अपना भाइयों का तजर्बा खुद का भी होगा कि भाई जितना पैसा लग गया है उतना पानी की बचत हो जाए है, फसल ठीक ठाक हो जाए है, माटी की अल्टा पल्टी भी उस तो हो जाए है। तो इस बात का भी भाई ध्यान करें, जब भी मौका है तो अपने जो जमीन है उसने एक सार कर लें। और हरी खाद की

खतरे किते सनी की बात आवे है, सनी तो कम ही बे इस्तेमाल में लाई जावे है, कम बोए है भाई। डेंचा ज्यादा बोए है, मूंग भी बोए है कुछ भाई। जो भाई मूंग बोना चाहो मूंग बोले, एक तोड़ा बन जाएगा, कुछ 10 रुपये उसके बन जाएंगे, हाथ में आ जाएंगे आगे किते कोई तेल पानी का खर्चे, बुआई का खर्च उसमें फायदा रह जाएगा। जो भाई डेंचा बोए है, 5-4 फुट का जब डेंचा हो जाए तो उस टाइम पर कटाई का भी उन्हें सोचनी है, तो इस हिसाब से बोए 20-25 किलो बीज लेकर और बुआरा कर दें। ई मौका है जैसे ही फसल मारी कट जाए, अगर उसका तुरंत बाद पड़ेवा करके जमीन बतरा आ जा, जमीन में नमी हो, तो उस टाइम पर आम डेंचे की बिजाई करा करें। ई भी टाइम सही चल रहा है, जो भाई करना चाहें कर लें, बीज ले आवें। बीज सरकार की तरफ से कई बार फ्री भी मिल जाया करे, चलो फ्री ना मिले और जो पीछे मिलाना पड़ जाए तो भाई ले आवें, फायदा के जाके घना होने वाला है। ई भी इतनी गोबर की खाद तो मार दो रस्से नहीं कि आए साल हम खेत में गिर सका। कोशिश करा हाँ, 1 साल छोड़ के 2 साल छोड़ के गोबर की भी खाद गिरा, बाकी और कोई हरी खाद है, जैविक खाद है, कोई इस तरह का सारा आम ले। हाँ देखो, पहले जमीन खाली रह जाया कर दी कुछ टाइम तक, खाली रहने में जमीन में ताकत बन जाया कर दी, लेकिन ईब जमीन मारी खाली नहीं रहती। पहले तो भाइयों द्वारा जमीन थोड़ी सी ज्यादा थी, जोत तो बड़ी थी, लेकिन ईब की करे, ईब तो या हैवी जितनी है, इससे हम काम चलाना है, सघन खेती का दौर है, बार बार फसल लेनी है। इब कुछ भाई तो कह रहे हैं कि साल में 3-3 फसल आराम से ले लें हैं, लेकिन जमीन का इस तरह दोन करना वो भी ठीक नहीं है। जमीन कितने एक दिन ती काम देगी, कितने एक दिन ती दान देगी, यह भी हमने सोचना है। रही पानी की बात है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं बार बार उनकी चेतावनी भी दी जा है, दो दो धान की फसल ले लें हैं, एक धान की फसल में बहुत ज्यादा पानी लाग जा है, और जो भाई दो फसल ले हुए हैं तो वो विचार करें इस बात पे कितना महत्वपूर्ण स्रोत है पानी। अगर यो ही कम हो गया तो फिर भाई आगे जाकर तो किल्लत मार जाएगी, और जब पानी पीण खातर भी नहीं रहा तो फिर घड़ी से कहने की जरूरत नहीं, समझदार हैं आप। दिक्कत कित की ही है, जीवन यापन करना असंभव हो जाएगा, मुश्किल में पड़ जाएंगे हमें। पानी की जितनी बचत हो उसके वो भी बचत हम रखा, वो बचत इस तरीके से रख सका हाँ कि कुछ ऐसी फसल बोए कि जिनमें पानी कम लगे, और सरकार का भी अपना प्रोत्साहन रहा है, कुछ राशि भी दिया जा है। चलो राशि की बात तो एक अलग है, वो मिल जाता अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमने इस बात पर विचार करना चाहिए कि ये हमारा फर्ज बना है जो हम खेती बाड़ी का काम करा हाँ, कि कम से कम पानी में जो सी फसल हो सके वो हमने लेनी है। कितने घनी जरूरत है, कितने पानी घनाए चढ़ है, ज्यादा तेज बारिश के मौके हैं, तो उस जगह पर हम धान की फसल ले लें। इसी बात नहीं है और फसल ना मुनाफा नहीं होता, मुनाफा हुआ है एक आधी फसल तो इसी हुआ है कि नाम मात्र का खर्चा हुआ है, उसमें फिर आगे जाकर बचत बतेरी रह जा है, तो इस चीज का भी ध्यान करें, फसल चक्र अपनावें। बाकी हाल के मौके की बात करा तो कपास की फसल की जिक्र करेंगे। कपास की फसल में भाई खरपतवार भी हुए हैं, खरपतवार खातर भाई कुछ दवाई का सहारा ले हैं, कुछ अपना हाथ की मेहनत बढ़ाए हैं, तो की कुछ ध्यान करना है करेंगे जिक्रो भी। लेकिन उससे पहले एक रागनी क्यों नहीं सुन लिया, जिसके गायक कलाकार हैं जगबीर सिंह बड़मियार उनके साथी।

जगबीर बण बिया और उनके साथियों की गाई ओड़े ईरामल जमाल के किस्से में तबाइया ने रागनी सुन ली। यो एक किस्सा रहेगा, कलाकार भी यही रहेंगे, एक रागनी और भी सुनेंगे थोड़ी देर के बाद। रागनी तो पहले जिक्र कराया था, भाई कपास की फसल जिन भाइयों ने बो रखी है या फिर जो बोन की तैयारी कर रहे हैं, सबकी खातर जान में लाने खातर कुछ बात हैं तो वो करेंगे। ही कपास की बिजाई का जिक्र करा तो 15 अप्रैल से लेकर जून का जो पहला सप्ताह उस टाइम थी आम करने की कोशिश करा करां, और मई का पूरा महीना कपास की बिजाई खातर बढ़िया बताया गया है। कुछ क्षेत्र हैं जो कर महेंद्रगढ़ है, बिवाणी है, डबवाली है, जित जमीन रेतली है, उस जगह पर रेत के टीबे बनने की समस्या आ जाए जब तेज हवा बने है, उस जगह पर अप्रैल का पहला जो पखवाड़ा है उससे टाइम पर बो दें कपास ने, नहीं तो फिर रेत उड़ेगा, वो जो छोटी छोटी पौध है वो दब जाएगी। पहले बो देंगे तो वो बाहर निकल आओगी, फिर दिक्कत नहीं मानेगी। बीटी कपास की बिजाई जिन भाइयों ने करनी है उसका सही टाइम अप्रैल का जो आखिर सी है उस टाइम थी, या फिर मई का महीना भी इसकी खातर कह इसके हैं उस टाइम थी बिजाई कर सका हम। फिर बात आओ खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार नियंत्रण खातर 2-3 निराई गुडाई हमने करनी ही पड़ेंगी। पहली गुडाई कसोलत कर दें सिंचाई तो पहले, बाद में सिंचाई के बाद या फिर बारिश हुआ है तो उस टाइम पर कोई दूसरे साधन है जो कर कल्टीवेटर हैं। कल्टीवेटर में तो फिर जब हम चलाओगे तो वो पौधे कटने की दबने की संभावना बना है। कुछ इसे छोटे यंत्र भाइयों का दौरा आ रहे हैं भी, वो ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, 10-12 हज़ार 15 हज़ार इतने के हिसाब से कि वो ले लें और उन्हें पीठ पर बांध के वो चलाए हैं। जित भी पौधे का आसपास कोई इस तरह का कोई खरपतवार दिखे है तो उसने वो बड़ी आसानी से घुमा घुमा के और काट दे हैं, और फिर वो सूख जा है उस जमीन में मिल जाएगा तो वो फायदा करेगा, जमीन फोली हो जाएगी। वैसे तो खरपतवार नियंत्रण खातर एक साधारण निराई गुडाई सब तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी बात आओ है कि कुछ भाई थोड़ा सा हरकत कर ले हैं, इस तरह का काम नहीं कर पाते तो उन्हें सोचें चल भाई रसायन का छिड़काव होते हैं, खरपतवार नाशकों का छिड़काव होते हैं, इस तरह काम चला लें तो उन्हें जब उगती नहीं ने कपास है उस तक पहले भी कुछ काम करना पड़ेगा। उगण तो पहले स्टोम्प नाम की दवाई है, स्टोम्प 30 का नाम तो पेंडामेथिलीन दवाई, इसका प्रयोग हम कर सका। हाँ देखो हम तो सलाह यह देंगे कि भाई जो आते कुछ हो जाए जितनी मेहनत है वह तो है फायदेमंद, दवाई का छिड़काव हम जितना करेंगे खर्च भी बढ़ेगा और आगे जाकर फिर फसल में भी दिक्कत आ जाए, फिर कोई और कोई कीड़े बीमारी ज़्यादा पनपेंगे फिर उसमें समस्या बनी रहे है। फिर पौधे जब निकल जाए हैं एक बार सूखी गुड़ाई जरूर कर दें। 1 किलो खातर ड्यूरान 200 ग्राम दवाई है, चाहे गेमिस्कून 600 मिलीलीटर दवाई ले लें या भी हम प्रयोग में लिया इसका। हाँ लेकिन बार बार बात यह आया है कि भाई कोशिश करें आते हो जा उन यंत्रा का जो जिक्र करा है भाई जानकारी है खूब लान लाग रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि कपास में और भी कितने कोई साफ सफाई कोई खरपतवार कोई और हमारी फसल खड़ी है कोई बाग है इस तरह की कोई बात आओ है तो उस मुँह में इस्तेमाल में ले जा सके हैं। चलो बड़ा साधन है भाई नहीं ले सकते, सबके बस की बात नहीं है, पैसे का मामला है, और कुछ भाई से हैं कि थोड़ी जोत है वो अपना घर का खर्च मुश्किल तो चल रहा है, बड़ी बड़ी उन्हें सलाह देने लग जाए वहाँ कह दें भाई या चीज़ ले लो या ले लो, कहना आसान है लेकिन लेना बड़ा मुश्किल काम हो जाया करे। इसी बात नहीं है कि घने कोई बड़ा पीसा भाई दूर है और वो काम करे, नहीं, जो किसान है उसके पास इतना है कि भाई उसका अपना काम चल जा और भाई परिवार का पेट पड़ जाए, थोड़ी बहुत जो बचत रह जाए उसमें छोटे मोटे कोई साधन खड़े हो जाए, थोड़ी बहुत सुख सुविधा वो ले सके। घनी मोटी जित बचत की बात आ ना वो खेती व्यापारिक स्तर पर करी जाया करे, उसका अलग ते रंग रूप बने है, अलग ते उसका काम बने है, अलग ते उसका भाइयों का काम करने का तरीका हुआ है। बिजाई तो पहले बासालीन का भी जिक्र आया है, 800 मिलीलीटर या दवाई ले लें, 200 लीटर पानी में छिड़काव कर दें और मिट्टी के ऊपर ईसना मिला दिया करा, उसके बाद फिर हम बिजाई कर दें तो जो खरपतवार नाशक हैं वो फिर नहीं होंगे। और जब हमने न्यू लग गए कि भाई काम करने वाले भाई नहीं हैं, खरपतवार नाशक खातर हमने कसोले गिल काम करवाना है तो उस तक पहले विचार कर लिया करा, कोई साटी सूटी डाल के कोई चीज़ आओ तो दवाई का छिड़काव हम पहले कर ले। लेकिन किसान भाइयों बार बार एक चीज़ का जो कराओ है हम तो यही बात कहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा काम हो जाए लेकिन उसने निपटा दें, जहाते निपटा दें। जब इन दवाइयाँ का प्रचलन नहीं था, देखो खरपतवार तो जब भी निकल आया कर दे
ऐसी बात नहीं है कि भाई नहीं लिख लिया करते, जब यंत्र भी नहीं थे आते सारा काम करना पड़ा था, हमारे बड़े बड़े थोड़ी मेहनत कर ले थे, लेकिन चलो इतनी के शौकीनी तो आ रही ही बाल में कि भाई सारा परिवार तो इस डाल काम नहीं करता, लेकिन इबी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जब हम किसान भाइयों मिलन खतर जाओ है ना, तो पूरा परिवार हमने खेत में पावा है। और जो जिक्र करें हैं कि भाई परिवार काम हाथ गलवा दे कि नहीं गलवा दे, वो किसान भाइयों के हैं हाथ नहीं गलवा देना, बिल्कुल साथ में खड़े होकर करवाओ है, पूरा परिवार काम करवाओ है। जब इस तरह का माहौल काम करने वाला का होया करे, जब बचत ज्यादा रहा करे। इब हमने कह दिया हक बचत को ना रहती, वह बचत न्यू को न रहती कि खर्च तो हम घने बढ़ा लिया है खेती में, बिजाई करी उस टाइम पे दवाई, बाद में दवाई, उसके बाद फिर छोटी ही कोई दिक्कत आ गई फिर दवाई, भाई बार बार हम दवाई का छिड़काव करेंगे, जहर का खाना भी बना है। और जब देखा जा तो खर्च इतना हो जाए है कि जब आखिर में हिसाब लगाओ है ना, तो फिर बचत थोड़ी रहे है, फिर तो हम नहीं मानेंगे कोई फायदा हक होने खेती करने में। लेकिन जो भाई मेहनत करे हैं उन्हें पूछ के देखो फायदा है, उसकी खातर थोड़ी सी आपकी हाथ की मेहनत चाहिए, वो बढ़ा ले, मजा आएगा, कुछ दिन थोड़ी सी दिक्कत आओगी, एक बार कसा शरीर का टूट जाएगा, उसके बाद काम करने जी भी करेगा और परिवार के जो लोग हैं वो भी साथ मिलकर काम करवाओगे। तो खरपतवार नाशियाँ का जिक्र करया जरूर है, लेकिन सलाह नहीं देंगे आगे जाकर कोई इस तरह की दिक्कत ना हो, फसल कमजोर ना रह जाए, तो अपनी हाथ की जितनी निराई गुड़ाई है वो कर लें। जिन यंत्रा का जिक्र करया है वो छोटे यंत्र ले आवें भाई, उन तक अपना काम चला सके हैं, खरपतवार खेत में ना हो। एक इस बात का हमने ध्यान करना है, वो तरीका कोई सा भी अपनाया जा, एक सूखी गुड़ाई करनी बहुत जरूरी बताई गई है, जो इसके डॉक्टर हैं वैज्ञानिक जो इस तरह का जानकारी रखे हैं ना, वो सूखी गुड़ाई की सलाह जरूर दें। वो न्यूदे हैं कि एक बार करी थोड़ा बहुत कितने कोई जड़ रहेगी वो जमाव ले गया खरपतवार ऊपर ना आगे फिर दिख गए, तो एक और गुडाई कर दें आगे जाकर, जब हम सिंचाई करेंगे ना पानी देंगे तो एकदम तो वो सारी जितनी छोटी मोटी डड़ी हैं वो भून जाएंगी और खेत साफ सुथरा हो जाएगा और फिर देखो जो फसल है उसका के रंग रहेगा। तो ये कुछ बात थी, चलो रागनी के बाद फिर भी करेंगे बात, जब कुछ टाइम रह गया तो। जिक्र चलिया था एक रागनी का, गायक कलाकार एक बार फिर जगबीर सिंह बड़म्बिया और उनके साथी और किस्सा रहेगा हीरामल जमाल का ही।

जगबीर सिंह बलंबिया और उनके साथियों के गाई उड़बाइया ने दूसरी रागनी सुन लिया। किस्सा था इरामल जमाल का, और जिक्र कराया था कि भाई जो अपनी कपास की फसल है उसमें खरपतवार नियंत्रण हो जाए तो की करें। देखो, खरपतवार नियंत्रण की खातर दवाई का भी जिक्र आया है, सटोम्प नाम की दवाई है, एक दो दवाई का और भी जिक्र कराया है। अगर ज़्यादा ही अति हो जाए, भाई खरपतवार घने हो जाए और कोई भी रास्ता ना दिखे, देखो फिर तो वह खरपतवार हमने किसी न किसी तरीके से नष्ट करने पड़ेंगे। लेकिन एक सलाह भाइयों तो यह दी जा करे कि शुरुआती दौर में जैसे ही लगे कि भाई खरपतवार ओन लाग रहे हैं, कुछ तो देखो दवाइयां का छिड़काव शुरू में ही करना पड़ा करे। शुरू में कर दे तो फिर खरपतवार होते ही नहीं, और चलो हो भी गए, किसी न किसी तरीके से दवाई नहीं इस्तेमाल कर पाए हम, नहीं उस टाइम पर हमने इलाज कुछ कर पाए, तो इस मौके पर फिर एक निराई करें, गुडाई करें। उसकी जब निराई गुडाई हो जाएगी तो उसमें उसके है काम चल जा, लेकिन ना काम चाले तो दूसरी भी निराई गुडाई की सलाह दी जाए। अगर उसकी सलाह जरूर नहीं दी जाए कि अगर वो करेंगे तो वो निराई गुडाई खरपतवार तो निकलेंगे उसमें, लेकिन जो पौधे हैं वो भी इतने बढ़िया हो जाएंगे, निरोड़ पौधे हो जाएंगे, उनका आसपास का हाथ की गेल भी हम निकाल सकें कोई इस तरह का खरपतवार हो। और इस मौके के खरपतवार इसे हुआ करें इनकी जड़ ज़्यादा गहराई तक जाया भी नहीं करती, थोड़ी सी कसौलतें कोई और खुरपे जो इस डाल की चीज़ हैं, या फिर एक इस तरह का यंत्र का जिक्र आया था जो तेल तो भी चल है भाई बतेरा उसने इस्तेमाल करे हैं, पेट्रोल तो चल है, छोटा सा इंजन हुआ करे वो, फिर किसी उसमें घूमर आ गए कोई ब्लेड टाइप इस टाइप की हुआ करे लंबी सी नाली, उसमें तो चल रहे हैं वो घुमा के वो भी कर सके हैं। कुछ ज़मीन पर चलने वाले छोटे से ट्रैक्टर से आ रहे हैं जो हाथ से चल रहे हैं, उनका भी रोटावेटर जिसे साथ निशा लाया उड़ो है वो भी इस्तेमाल में मिला इसका, हाँ तो वो इस्तेमाल में लिया, अगर जितने भी खरपतवार हैं वो सारे नष्ट हो जाए ताकि फिर हमारी फसल बढ़िया हो उसके। चलो बाकी साँझ ने भाई पशुपालन संबंधी अपना कार्यक्रम है फोन इन, उसमें मिलेंगे ई बजाज चाहेंगे सारे मन भाइयों ने राम राम।

आपने सुना खेत खलिहान कार्यक्रम मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर डीटीएच और न्यूज ओन एआईआर पर। यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्ज पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर डीटीएच और न्यूज़ ओन एआईआर पर आपसे फिर मुलाकात होगी।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं। अब हमारी आज की तीसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। आइए सुनते हैं युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

0: कार्यक्रम युवा संसार सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को आपके साथी हर्ष का नमस्कार
1: और आप सभी को आपके साथी नंदिनी का भी नमस्कार। तो हर्ष, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज है 15 मई और आज के दिन हम बेहद खास दिवस मना रहे हैं, जो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और साथियों, आपको बता दें कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य परिवार के महत्व को समझाना और समाज में परिवार की भूमिका के प्रति जागरूकता फैलाना है।
0: बिल्कुल सही कहा नंदिनी आपने और श्रोताओं, परिवार हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। परिवार हमें प्यार, सुरक्षा, संस्कार और सहारा देता है और इसीलिए इस दिन का उद्देश्य यही है कि परिवार के महत्व को समझें हम सभी और परिवारों के बीच प्रेम तथा एकता को बढ़ावा दिया जा सके।
1: आपने बिल्कुल सही कहा हर्ष। और संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1993 में इस दिवस की घोषणा की थी ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि परिवार केवल रिश्तों का समूह नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास, सुरक्षा और संस्कारों की पहली पाठशाला है। परिवार ही वो स्थान होता है जहाँ व्यक्ति अपने जीवन की शुरुआत करता है और अच्छे संस्कार, सहयोग, सम्मान तथा जिम्मेदारियों को सीखता है।
0: और साथियों, परिवार ही समाज की पहली इकाई होता है। बच्चे अपने परिवार से ही अच्छे संस्कार, आदर और अनुशासन सीखते हैं। परिवार के साथ रहने से व्यक्ति को खुशी और आत्मविश्वास तो मिलता ही है और आज के इस व्यस्त जीवन में लोग अपने परिवार को कम समय दे पाते हैं, इसलिए यह दिवस परिवार के महत्व को याद दिलाता है कि कितना ज़रूरी होता है अपनों का साथ होना।
1: आपने बिल्कुल सही कहा हर्ष। और एक मजबूत परिवार ही समाज और राष्ट्र को भी मजबूत बनाता है। आज की तेज भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने परिवार के साथ संबंधों को मजबूत करने और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की प्रेरणा देते हैं। परिवार में माता पिता, दादा दादी, भाई बहन और अन्य सदस्य मिलकर प्रेम और अपनापन का वातावरण बनाते हैं, जिससे जीवन खुशहाल बनता है और कठिन परिस्थितियों में परिवार ही हमारा सबसे बड़ा सहारा भी बनता है।
0: बिल्कुल ही सही बात कही नंदिनी आपने और हमें सिखाता है कि परिवार हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है और हमें अपने परिवार का सम्मान करना चाहिए, उनके साथ प्रेम और सहयोग के साथ रहना चाहिए। और लेकिन अगर कमियां भी आती हैं, हम उनकी बातें नहीं समझ पाते हैं, तो भी कोई बात नहीं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक परिवार के बीच, वो है साथ रहना। उसी से हम समझते हैं कि इस पल की जो मुश्किल है वो आगे बढ़कर कहीं ना कहीं कम हो ही जाती है और अक्सर हमारे जो साथी हैं, हमारा परिवार, वो हमारे साथ रहता है।
1: जी बिल्कुल हर्ष, आपने बिल्कुल सही कहा और इसलिए हमें अपने परिवार का सम्मान करना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए और प्रेम व एकता बनाए रखनी चाहिए। और एक बार हम फिर से कह सकते हैं कि परिवार वो शक्ति है जो हर मुश्किल में हमें संभालती है। एक खुशहाल परिवार ही सुखी जीवन की पहचान है। तो अभी हर्ष, हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में और जैसा कि साथियों आप जानते हैं, आज है शुक्रवार का दिन और आज के दिन हम आपके लिए कार्यक्रम लेकर आते हैं युवा पसंद, जिसमें आपके लिखे पत्रों को हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं और सुनवाते हैं आपको आपकी ही पसंद के कुछ गीत। और कार्यक्रम में पहला गीत सुनवाने से पहले हम आपको बता दें कि कार्यक्रम युवा पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रोहतक, जिसका पिन कोड है 124001, इस एड्रेस पर आप हमें अपने खत लिखकर भेज सकते हैं ताकि हर्ष हम अपने कार्यक्रम में नए नए नाम जो है वो शामिल कर सकें और अपने साथियों को हम उनकी ही पसंद के कुछ गीत सुनवा सकें।
0: और सबसे पहला गीत सुनना चाहा है आप में चोहल्दा बागपत से संजय ढींगिया, नमन मुस्कान कुणाल, महाराष्ट्र से गंगाधर पोपलवार, स्मयक प्रियंका, लक्ष्मी स्वरीत और उत्तम पोपलवार, डब्बाली से जेके बकुलिया, सुनीता, संजय, मीनू, राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित नारंग, मैसूर सीतामढ़ी से आप हैं तलत जहानास, फरत जहानास, रूही, वसीम अकरम, नदीम, शमीम और अमन अकरम।
1: करनाल से ये खत हमें मिला है सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन, प्रतिभा, इशप्रीत, हरिपाल कौर और नरेंद्र तनेजा का। नांदूरा निरुपति नगर से आप हैं संतोष वसाने, उषा, ऋषिकेश और अनिकेत वसाने। तालुका पूर्णा देवांग महाराष्ट्र से इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है सदाशिव थोरात ने। साथ ही धामणी मानोरा वाशिम महाराष्ट्र से इसी गीत की फरमाइश आई है हमें तुलसीराम डेरे, माया संदेश डेरे, आदेश, किरण, प्रज्वल, दादुल्या डेरे, ध्रुव गिरी, ज्योति, अनु गुलशन, चंद्रकांत पाटिल, नितिन खाड़े, आकाश ढोले, शेखर सुनोने, किशन वायले, तेजस और प्रणीता ने। आइए साथियों सुनते हैं आप सबकी फरमाइश का ये गीत जो है फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से। गाया है आतिफ असलम ने, गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है प्रीतम चक्रवर्ती ने।

0: तो हर्ष, अभी हमारे साथियों ने सुना उनकी फरमाइश का ये प्यारा सा गीत, जिसे हमने लिया था फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से। गाया था आतिफ असलम ने, गीत के बोल लिखे थे इरशाद कामिल ने और संगीत दिया था प्रीतम चक्रवर्ती ने।
1: चलिए साथियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत। और इसे सुनना चाह है आप हैं लोगढ़ फिरोजपुर से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप सिंह, गुरलाल, अविराज, गुरमान और गुरनूर सिंह। बदायूं से आप हैं आफरीन खान और जमीर खान। रघुनाथपुरा से हमें ख़त मिला है, आप हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। और छत्तीसगढ़ से आप हैं अनिल, अंजुलता, आदित्य, कृष श्रीवास्तव। दिल्ली से ख़त में मिला है, आप हैं सोनम और अदीबा। बागपत उत्तर प्रदेश से आप हैं एहसान अली।
0: साथ ही मनी गाछी जत्तू का बाट से इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है विजय लाली साफ़ी, आलम मिस्त्री, मोहम्मद वकील, राही फिरोज़ आलम, नास परवीन, शबाना रिजवान और हिना ने। बेरड़ी से आप हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे।
1: लीजिए साथियों, सुनिए फिल्म एक था टाइगर से गीत। आवाज़ें हैं के और पलक मूछल की, शब्दों से सवारा है अन्विता दत्त गुप्तन ने और धुन तैयार की है सोहेल सेन ने।

सार आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने वाले हैं। अब समय है हिंदी समाचारों का, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।

0: सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने RG Kar मेडिकल कॉलेज मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलालाउत वितिदसन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम रूपरेखा।

श्रोताओं, पहले आपको आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। रात्रि 9:30 बजे सुनेंगे नाटक दुनियादारी। शाम 6:20 पर कृषि जगत फोन इन कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर छज्जू राम चौधरी से पशुपालन संबंधी समस्या व सुझाव विषय पर अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेंगे। ग्रामीण संसार कार्यक्रम में शाम 7 बजे फोन इन कार्यक्रम जारी रहेगा।

रात्रि 8:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। देर शाम 7:30 समय रहेगा फिल्म संगीत कार्यक्रम का। पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम भूले बिसरे गीत श्रोतागण सुन सकते हैं रात्रि 10:00। एक फिल्म से कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात 9:15 पर। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

श्रोताओ, अब प्रस्तुत है कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। रात 10 बजे सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात 9:30 बजे आप सुन सकते हैं राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रातः 7:30 बजे कार्यक्रम रहेगा सुबह सवेरे। युवा संसार कार्यक्रम में शाम 5:30 बजे रोजगार समाचार विशेषांक रहेगा।

दिन में 2:30 बजे खेत खलिहान कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा कृषि यंत्रों की देखभाल। शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर मेहर चंद कंबोज से मक्का की चारे व दाने के लिए काश्त इस विषय पर बातचीत सुनेंगे। ग्रामीण संसार कार्यक्रम में शाम 7:00 कार्यक्रम रहेगा आपकी पसंद सुगम संगीत कार्यक्रम।

को आप सुनेंगे प्रातः 7:15 पर और रात 8:25 पर। प्रातः 9 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रहेगा सबरस। दिन में 1:10 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम में सुनेंगे और देर शाम 7:30 फिल्म संगीत का कार्यक्रम का आप आनंद ले सकते हैं। एक फिल्म से कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात्रि 9:15 पर। प्रातः 8:30 लोक संगीत कार्यक्रम में हमारे कलाकार रहेंगे जगबीर सिंह और उनके साथ ही दिन में 12:30 आप सुनेंगे हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी। ये थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब एक स्थानीय सूचना। ये सूचना हमें थाना शहर गोहाना जिला सोनीपत से प्राप्त हुई है। इसके अनुसार मंजू पत्नी मनोज यह लापता है, बिना बताए घर से कहीं चली गई है। उम्र है 24 वर्ष और रंग गेहुआ, कद है 5 फुट, गोल चेहरा है। इनके विषय में कोई भी जानकारी हो तो आप थाना शहर गोहाना जिला सोनीपत से संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 6:10 होने को हैं। अब समय है प्रादेशिक समाचार का, जिन्हें आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG परीक्षा दोबारा 21 जून को लेने की घोषणा की। अगले वर्ष से ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की स्थापना के 50

0: स्टार्ट 2025-26 में पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। परीक्षा का समय 15 मिनट बढ़ाने को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा,
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि परीक्षा के लिए फिर से कोई फीस नहीं ली जाएगी और विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा। पेपर लीक मामले की CBI जांच को लेकर उन्होंने कहा,
1: CBI तह तक जाएगी, कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है, राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है CBI के ऊपर, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता चीज को लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लिए खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है, हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे।
0: श्री प्रधान ने कहा कि NTA में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आज भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय विद्युत आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, राजस्थान व पंजाब के सिंचाई मंत्री, मुख्य सचिव पंजाब व अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिमा बराड़ व मनोज त्रिपाठी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया। केंद्रीय विद्युत आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा,
2: जो हमारा भाखड़ा डैम है उसके प्रबंधन के लिए ये संस्थान बना था 15 मई 1976 में। आज 15 मई 2026 ठीक 50 वर्ष पूरे हुए हैं, तो 50 वर्ष पूरा होने पर 51वां स्थापना दिवस आज ये लोग मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए और मुझे बुलाया गया। तो बहुत अच्छे प्रकार से वो हमारी जो इंजीनियर्स हैं, हमारे कर्मचारी हैं, हम इस सारे प्रोजेक्ट के प्रबंधन की सराहना भी की।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड ने सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। जो भी कमियां हैं उन्हें बोर्ड से परामर्श करके पूरा किया जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि उन्हें BBMB कर्मचारियों की मांगें मिली हैं, उन पर सहानुभूति से विचार किया जाएगा। अभी सिर्फ कैशलेस इलाज की घोषणा की गई है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग का संदेश भी दिया। आकाशवाणी चंडीगढ़ ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी की स्थापना के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल चंडीगढ़ में वॉकेथॉन का आयोजन करेगा। यह वॉकेथॉन सुबह 6 बजे सुखना लेक पर आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी की स्थापना 1936 में हुई थी। इस उपलक्ष्य में मई माह में देशभर के केंद्रों में वॉकेथॉन व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आकाशवाणी की बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की समृद्ध विरासत का जश्न मनाना है। आज तखत सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ के लिए सिरसा से विशेष रेलगाड़ी सिख श्रद्धालुओं को लेकर रवाना हुई। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह विशेष रेल हरी झंडी दिखाकर रवाना की। इससे पहले रेलवे स्टेशन पर ही मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा,
3: आज इस धरती पे सचखंड नांदेड़ साहब के लिए साढ़े श्रद्धालुओं का एक जत्था उथे तीस नवान ले जा रहे हैं, ये मेरे लिए बड़े फखर की गल है।
0: जिला प्रशासन द्वारा यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इस दौरान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झींडा भी मौजूद रहे। उन्होंने सरकार की इस प्रयास के लिए प्रशंसा की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी।

0: चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आज से विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू करने की घोषणा की है। चंडीगढ़ के मतदाताओं की अंतिम सूची इस वर्ष 22 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। तीसरे चरण के तहत SIR देश भर के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा, जिनमें पंजाब और हरियाणा भी शामिल है। आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी देते हुए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने कहा कि 614 बूथ स्तरीय अधिकारी 15 जून से 14 जुलाई तक घर घर जाकर शहर के 518,000 और 663 मतदाताओं का विवरण इकट्ठा करना शुरू करेंगे।
1: पहला जो चरण है इसमें वो है हमारा ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल का, और ये जो प्रिंटिंग का जो कार्य है ये हमारा 5 जून से लेके 14 जून तक ये कार्य होना है। उसके बाद एक हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन होनी है बाय द बूथ लेवल ऑफिसर्स, और ये एक महीने का समय है, 15/6 से लगभग 14 जुलाई तक का। उसके बाद क्योंकि हमारे को इसके हिसाब से पोलिंग स्टेशन को रैशनलाइज करना है ताकि हर पोलिंग स्टेशन पे 1200 से अधिक मतदाता ना हो, उससे कम ही हो या अप टू 1200 मतदाता ही हो पोलिंग स्टेशन वाइज। उसके अलावा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की पब्लिकेशन है जो कि 21/7 को की जाएगी। क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का लगभग एक माह का पीरियड है, 20 अगस्त तक का। उसके बाद फाइनली क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस को डिसाइड किया जाएगा और 22/9 को फाइनल पब्लिकेशन की जाएगी।
0: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि SIR के माध्यम से पात्र और अपात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी।
1: स्पेशल इंटेंसिव रिविजन का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह हमारे जो इलेक्टोरल रोल्स है उनका शुद्धिकरण एक तरीके से किया जाए ताकि जो हमारी मतदाता सूची है वो सटीक हो, शुद्ध हो, समावेशी हो, और जो उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज है वो ना हो। जिन लोगों की पात्रता नहीं है उनको उसमें से हटाना है और जो पात्र है उनको उसमें लाना है।
0: हरियाणा ने एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज चंडीगढ़ में यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि हरियाणा का यह प्रदर्शन एनीमिया को कम करने के प्रति राज्य की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा ने 86.5 के AMB इंडेक्स के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई है। वर्ष 2024-25 में हरियाणा 5वें स्थान पर था, जिससे इस वर्ष की रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह उपलब्धि बहुआयामी रणनीति का परिणाम है। AMB स्कोर कार्ड केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की 2 सप्ताह से चल रही हड़ताल खत्म हो गई है। सफाई कर्मचारी कल काम पर लौट आए। ये कर्मचारी 1 मई से हड़ताल पर थे। इसी के साथ अग्निशमन विभाग के हड़ताली कर्मचारी भी काम पर लौट आए हैं। प्रदेश सरकार के साथ हुई वार्ता में मांगों को लेकर सहमति के बाद यह निर्णय लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG परीक्षा दोबारा 21 जून को लेने की घोषणा की। अगले वर्ष से ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा, BBMB कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति से विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा से सचखंड श्री हजूर साहिब के लिए विशेष रेलगाड़ी रवाना की। निर्वाचन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू करने की घोषणा की। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भाइयों ने दलजीत भाई की राम राम। भाइयों, आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन या तो पशुपालन संबंधी या फिर कृषि संबंधी कोई एक विशेषज्ञ हमारे साथ बैठे हैं। आपकी जो भी समस्या है आप फोन करो हो, उनका समाधान आपने मिला है। आज बारी है पशुपालन संबंधी जो समस्या है उनके समाधान की, और समाधान करने के लिए हमारे पास बैठे हैं बहुत ही अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर सीआर चौधरी। नाम आपने पहले भी सुना है, डॉक्टर छाजूराम चौधरी। आप रिटायर्ड एसडीओ हैं, बहुत लंबा आपका अनुभव रहा है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्टूडियो में आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद दलजीत भाई।
3: तो देखें फोन कॉल पर कोई श्रोता है कि। हेलो।
5: हेलो, नमस्ते जी।
3: हाँ जी, नमस्कार, नाम बताओ।
5: राजवीर जी, गांव पांडवान, जिला तरकी दादरी।
3: अच्छा राजवीर जी, बताओ समस्या क्या है।
5: समस्या जी घनी करड़ी है, ये छोरी चीचड़ जके नहीं ले रहा।
3: अच्छा,
5: पक्को फ्रेश करवा लियो फिर भी युक्का न्यू।
3: अच्छा, चीचड़ कलीली।
5: हाँ कलीली।
3: अच्छा, पशु कितने का रखो हो?
5: पशु तो जी दो मैं रखा।
3: अच्छा, दोनों की दिक्कत है?
5: हाँ दोनों घरे काटड़ी है उसका भी।
3: चलो, समस्या का समाधान जरूर होगा डॉक्टर साहब।
4: भाई ऐसा है, अपन क्या करते हैं गलती राजवीर जी की, पशु के शरीर पे ही दवाई लगाते हैं।
5: हाँ जी।
4: जबकि शरीर पे भी दवाई चाहिए और साथ साथ उसी की ढाई गुना ताकत की दवाई उसके ठाण में जहाँ पे भी वो बांधते हो आप, बाहर या भीतर।
5: और हाँ जी, ये ले रखिए तो ज्यादा देर नहीं बताओ तो डॉक्टर की टीम आई जरूर है।
4: अच्छा,
5: वो था लाउन खातिर बता ली है ना।
4: हाँ जी हाँ जी,
5: वो नहीं बोले तो घनी कसौटी की तो आवाम भी बोलो पशु का चढ़ सके
4: ना। ऐसा नहीं है, जो भी आम दवाई है उसका एक अनुपात है। जैसे एक दवाई मैं आपको बताता हूँ, रीड करके, RIDD, रीड।
5: एक बार फिर बताइए जी।
4: रीड नाम है दवाई का, रीड।
5: रीड जी।
4: हाँ रीड। ये जैसे 15 ml ले आओ आपके दो पशुओं के लिए, 2-3 महीने 4 महीने चला जाएगी। 2 ml तो दवाई लेनी है, 1 किलो 1 लीटर लेना है पानी।
5: पानी जी।
4: इसको मिला के आंख और मुंह को, और कोई शरीर पे जख्म है उसको छोड़ दीजिए आप, बाकी सारे शरीर पे लगा के 2 ml 1 लीटर में, और छाया में बांध दीजिए। धूप में पशु को बेचैनी करेगा, चिरमराट होता है।
5: अच्छा जी, छाया बांधना
4: पड़ेगा। हाँ, और इसी दवाई को 1 लीटर पानी में 5 ml मिला के, मतलब ढाई गुना मिला के उसको ठाण में छिड़को, 2-2 फुट दीवार ऊंचाई तक भी।
5: हाँ जी।
4: तो आपको लगेगा कि हाँ अब ये जो है शोरी चिचड़ खत्म हो गए।
5: नाम बताया जी, फिर बताइए।
4: रीड, RIDD, कोई लिखना जानता हो तो रीड लिख लो। हाँ, बस बिल्कुल ठीक है।
3: RIDD, हाँ, ये दवाई का नाम है। दुकान पर जाओगे तो जरूर मिल जाएगी राजवीर जी।
5: ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी।
3: अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद।
5: अच्छा, धन्यवाद।
3: हेलो।
6: हेलो।
3: हाँ जी, नाम बताओ।
6: हाँ नाम जी सुरेश कुमार जी, जिला रोहतक जी, तहसील कालौर जी, गाँव लाड़ी जी।
3: वाह जी, अब समस्या बता दो।
6: समस्या ये है जी, पशु का विचार है जी, कृषि के अंदर कृषि विभाग का विचार है जी, इस बारे में जानकारी है जी पशु का।
3: हाँ, पशुपालन, पशुपालन संबंधी,
6: पशुपालन संबंधी। तो 5 महीना मैच प्रेग्नेंट है।
4: हाँ ठीक है ठीक है, बताइए।
6: कल का देख रेख कैसे करे, देख रेख पानी गर्मी का मौसम की जाते हैं।
4: आपकी भैंस 5 महीने की क्या बन है, गर्मी के लिए बचाव के लिए पूछ रहे आप?
6: गर्मी का बचाव के लिए कुछ खुराक के देने के लिए तेल है या कोई घी है या कोई
4: ऐसा है? इसको अभी दूध दे रही है या ये नॉट रही है?
6: अभी एक टाइम दूध दे है,
4: दूध देती है,
6: चाहिए देती है एक टाइम।
4: ठीक है ठीक है। एक तो भाई सुरेश नाम है ना आपका?
6: हाँ जी, सुरेश नाम है जी।
4: हाँ, तो इसको आप एक तो पहले तो कीड़ों की जाँच करवा लो।
6: अच्छा,
4: क्योंकि आगे आगे जो भी खुराक इसको डालोगे वो इसको भी चाहिए और इसके अंदर पल रहे बच्चे को भी खुराक चाहिए, तो वो पूरी तब लगेगी जब पेट में कीड़े नहीं होंगे।
6: इसका टेस्ट कहाँ करा है जी?
4: टेस्ट आप अपने अस्पताल में करा लो या नजदीक कोई लेबोरेटरी, जैसे रोहतक आते हो तो रोहतक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ करवा लो।
6: हमारे अस्पताल में लेबोरेटरी तो है नहीं जी।
4: तो आप कभी रोहतक तो अपन आते रहते हैं, रोहतक करवा लीजिए आप।
6: अच्छा,
4: उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ब्याणे तक इसको 50-40 ग्राम खनिज लवण जरूर डालिए।
6: खनिज लवण जी,
4: वहाँ भी नहीं, वहाँ भी मिलता है, बाजार में भी मिलता है और अपने अस्पताल में भी आप पता करिए, वहाँ पे भी हो सकता है कि सरकारी जो है ना सप्लाई आ रखी हो, तो आप वहाँ से खनिज लवण जितना वो कंपनी उसको रिकमेंड करती है, आपके अस्पताल की जो दवाई है वो डॉक्टर आपको बताता है इतना रोजमर्रा इसको डालना है, उसको ब्याणे तक दीजिए और 30-40 ग्राम नमक भी मोटा डालना जरूर है।
6: नमक जी,
4: यो ना जो देसी नमक आप पीस के खाया करते,
6: अच्छा,
4: मोटा जो कट्टे में लाया करते पहले,
6: ठीक है ठीक है,
4: वो सस्ता नमक 30-40 ग्राम रोजमर्रा इसको चाहिए। ताजा पानी पिलाइए और हरा चारा सूखा जो आपके पास है बढ़िया साफ सुथरा इसको चारा दीजिए आप।
6: ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी,
3: धन्यवाद। हेलो, लगता श्रोता लाइन पे है, संपर्क नहीं बन पा रहा। हेलो डॉक्टर साहब, पहले पशु रखा करते?
4: हाँ जी।
3: उनती गणी सी चीज नहीं खवानी पड़ा करती, काम उनका चाल जाया करता, लेकिन आज कल ऐसा हो रहा है कि कुछ चीज तो ऐसी होगी कि वो बाहर से लिया कर पशु उनती खवानी पड़ेंगी।
4: ऐसा है दलजीत भाई, पहले के रख रखाव में और आज के रख रखाव में बहुत अंतर है।
3: हाँ,
4: पहले हर पशु दिन में 1-2 घंटे 4 घंटे चारा गांव में बाहर घूमने चला जाता था।
3: ठीक बात।
4: और वहां से जड़ी बूटी से लेके सब कुछ जो उसकी जरूरत की चीजें होती थी वो अपने शौक से छांट छांट के खा लेता था,
3: मिल जाया करता
4: और वो उसको मिल जाती थी। इतना यूरिया का मतलब सेवन खेती में नहीं था।
3: हाँ।
4: नहीं इतनी डीएपी थी, सारा जो है ना प्राकृतिक था।
3: ठीक बात।
4: तो उसमें शरीर की जरूरतें पूरी ऑटोमेटिक हो जाती थी।
3: हाँ।
4: लेकिन आज सब कुछ बदला हुआ है, सारा आपका चारा है, दाना है, सारा ही जो है ना फर्टिलाइजर्स के ऊपर निर्भर है। तो उसमें कई बार कोई चीज ज्यादा बढ़ा देता किसान, तो दूसरी चीजें जो पौधे को लेनी चाहिए वो भी नहीं ले पाता,
3: वो भी नहीं ले पाता।
4: जैसे अब सब्जी है।
3: हाँ।
4: सब्जी में अपने मिर्च ज्यादा कर दे, नमक ज्यादा कर दे, तो चाहे कितनी बढ़िया सब्जी हो आप खा नहीं सकते,
3: खा नहीं सकते।
4: तो वही चीज यदि जमीन में आपने बदल दी तो सब कुछ होते हुए भी वह जमीन बेकार है उस पौधे के लिए।
3: बिल्कुल ठीक।
4: तो वो हालात बने हुए हैं।
3: ठीक जिक्र करें आपने। और देखो इस सब एक बात और भी आया है कि छोटी मोटी कोई बात हो जाया करती, बुखार था कोई, इस डाल के कोई बात थी हल्का फुल्का, कोई ठंड लग जाया करती, घरेलू उपचार होया करते, उससे तो काम चल जाया करता।
4: प्रतिरोधक क्षमता पशु की अच्छी थी, मानस की अच्छी थी।
3: हाँ, लेकिन आज देखे है ना, तो आज तो इलाज करवाना,
4: आज हम सारे दवाइयों पर निर्भर है।
3: बिल्कुल ठीक बात।
4: शरीर में जान नहीं है जिसको अपन इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं।
3: ठीक बात है।
4: न आदमी में है न पशु में।
3: हाँ। हेलो, श्रोता लाइन पे हैं, डॉक्टर साहब संपर्क नहीं बन पा रहा। हेलो हेलो हेलो, चलो देखते हैं दोबारा, फिर संपर्क बनेगा। आपने जिक्र करा कि शरीर के अंदर ताकत होया करती।
4: हाँ?
3: वो ताकत बाहर घूम का आ करता, उसकी भी थी, उसकी देखभाल का हिसाब भी। पहले वाले तो के करा करते, वो मारे तो बूढ़े उनका ठाण में सोया करते, ई बाप तो ऐसी तरह सो जाए हंडांगर ने बांध दे अपने की।
4: दलजीत भाई आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं।
3: हाँ।
4: हमारे देश में सूरज की लाइट की कमी नहीं है।
3: नहीं है,
4: लेकिन आज आप विटामिन डी चेक करवाओ।
3: हाँ?
4: जो कि कुदरती हमने को सूरज की लाइट पड़ते ही मिलने लग जाती है। विटामिन डी की कमी हमारे अंदर,
3: पशुओं में भी कमी है, मनसा में भी
4: दिनों में कमी है।
3: हाँ, ठीक बात। हेलो
7: हेलो।
3: हाँ जी, नाम बताओ।
7: नमस्ते बलजीत भाई।
3: नमस्कार जी, नाम बता दो।
7: नाम तो महीपाल जी, जला जी, जी गांव बताना।
3: हाँ महीपाल जी, बताओ क्या समस्या है पशुपालन संबंधी?
7: समस्या जी ये मीठी आवाज में कितनी समझदारी बात बता रहे जी, खेत ज्ञान में बलजीत भाई।
3: मेरी मीठी आवाज है आपकी से, स्वाद सा तो मन भी आ रहा है।
7: अच्छा।
3: हाँ बताओ भी समस्या। कोई बात नहीं, धन्यवाद खातर सोमवार ने चौपाल का कार्यक्रम आ है उसमें बतलाओगे बैठ के, मैं बैठूंगा चाहे अनिल भाई बैठेंगे चाहे सुरेंद्र भाई बैठेंगे, कोई इनको जरूर पाओगे आपने
7: उसमें मिल जाने की कोशिश करा दी।
3: कोई बात नहीं, कोई पशुपालन संबंधी समस्या हो तो बता सको हो बैठे
7: सोच रहे हैं।
3: चलो बड़ी अच्छी बात है, लो ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब ये आगे बात है, एक और बात जो हमारा ध्यान में है, पहले पशु ज्यादा भी रखा कर दे और पशुओं का न्यू करा कर पूरा मेरे से मन सा भी लग गया करता, ये भी एक एक पशु रखे समस्या दिया भी होगी।
4: एक एक भी नहीं रखना छोड़ गए भाई दलजीत,
3: एक एक भी छोड़ गए,
4: हालात ऐसे आ रहे हैं जिस कुंडबे में पांच भैंसे बंधा करती आज वहां एक बंदरी है।
3: हाँ,
4: एक तो महंगा हो गया पशु,
3: महंगा हो गया,
4: दूसरा बीमारियां इतनी ज्यादा आने लग गई। हाँ। कि यदि एक बार पशु बीमार हो गया या टाइम पे समय पे नए दूध नहीं हुआ।
3: हाँ।
4: तो उसका सारा ही फायदे का नुकसान की तरफ शुरू हो जाता है।
3: ठीक बात,
4: वो इतना तंग आ जाता है कि कहता है भाई इब के तो रख ली भैंस, अगली बार तो शायद हम नहीं रखेंगे।
3: ठीक बात है,
4: तो ये हालात बन रहे हैं। अच्छा, कुछ हमारे पशुपालक भाई जो है ना, जितना जरूरत उस पशु की तरफ देख रेख की, टाइम टू टाइम उसकी जांच की, वो करवाते भी नहीं है।
3: हाँ।
4: हमारा आदमी सुस्त है,
3: सुस्त है।
4: जब वो पशु खुद कहने लग जाता है कि मैं बीमार हूँ।
3: हाँ।
4: जब वो दूध नहीं देगा या टाइम पे जो उसका टाइम है उस टाइम नए दूध नहीं होगा, कुछ ना कुछ खराबी खुद बताएगा, तब उस पे जो है ना भागता है।
3: ठीक बात है।
4: और उसमें भी सही जगह सलाह नहीं लेगा, जो सा पड़ोसी हुक्के पे बैठा है उसको सलाह दे रहा है वही कर लेगा,
3: वही कर लेगा।
4: ये मोटी बात है हरियाणा की, अपने आदमी के तो हमने 40 साल होगी देखते, वो उसके लिए वैध है।
3: ठीक है डॉक्टर साहब,
4: तो वो ही खतरनाक है।
3: और डॉक्टर साहब इसी लाइन में नहीं, मेरा तो एक और तरफ भी ध्यान गया है भाई, समझ पाओगे। कोई भी मोटर हमारी इतने जल नहीं लेते, नहीं तो उसमें ग्रीस नहीं दवा
4: देंगे,
3: वो सर्विस टाइम पे उसकी करवा ले तो वो खराब ना
4: चाहे हो, उसकी आवाज बदल गई।
3: हाँ।
4: चाहे पता है कि कुछ खराबी आ रही है, लेकिन जब तक वो रुकेगी नहीं, मानता नहीं।
3: जब उसने ठीक करवा,
4: वो ऐसा ही आदत पड़ी
3: है, वो पशु के साथ हो रहा
4: है,
3: उसकी जो जरूरत है जो देख रेख है वो नहीं करवाते।
4: अब मैं आपको बताऊं, हमारे पास तब आएंगे बोले जी कटड़ी जीभ निकाल रही है।
3: हाँ।
4: मिट्टी खा रही है।
3: हाँ।
4: पेट ढोलसा हो गया, कभी पिचकरा ठीक करती है, कभी जो है ना कब्जी हो जाती है, मतलब वो पशु खुद बता रहा है कि मैं बीमार हूँ।
3: केस बिगड़ ले है जब,
4: तब तब आएंगे, तब उसको सारी चीज चाहिए, इलाज भी चाहिए और उसको आगे फिर सेहत बनाने की दवाई भी चाहिए।
3: ठीक बात है,
4: तो बहुत फर्क आ गया पहले से।
3: ठीक बात, देखते हैं श्रोता है कोई लाइन पे। हेलो हेलो हेलो, आवाज कुछ ऐसी आ रही है कि श्रोता लाइन पे हैं लेकिन फिर फोन कट जाता है। हेलो हेलो हेलो, तो डॉक्टर साहब आपका कहना ये है कि बिल्कुल सही भैया का ध्यान में दुआ कि भाई जो जरूरी संभाल है वो तो समय रहते करवा लेनी चाहिए। बात आओ है टीकियां की, इब टीकियां का जब जिक्र चल लगा ना को मेरे हिसाब ही नहीं बैठा होगा, उन्होंने कहा भाई दूध तो सूख जाएगी, पहले दिमाग में डर बैठा दे चीज का।
4: उसके दोनों कारण है।
3: हाँ।
4: यदि ढंग से कोई डॉक्टर है,
3: हाँ,
4: एक पढ़ा लिखा है, डिप्लोमा होल्डर है या डॉक्टर है जिसके पास डिग्री है और वो टीकों का पूरा ज्ञान है
3: जी,
4: तो वो ऐसी दवाई दूध वाले को कभी लगाता ही नहीं जिससे दूध पे फर्क पड़े
3: जी,
4: कभी भी नहीं लगाएंगे, चाहे 2 दिन वो लेट आराम दिखा दे
3: बिल्कुल,
4: लेकिन वो लगाएंगे ही नहीं ऐसी, क्यों? मेन काम तो प्रोडक्शन का ही है।
3: हाँ।
4: उत्पादन का है, उत्पादन ही रोकने का आपने दवाई लगा दी, आपने क्या डॉक्टरी करी है फिर?
3: ठीक बात,
4: तो वो कभी भी पशुपालक के इसके खिलाफ कभी नहीं करते।
3: मतलब भ्रांति एक दिमाग में इसी हो जाए है, अगर ये टीके लगवाएंगे ना मुंह खोर के ये करेंगे,
4: वो ऐसा है हमारा आदमी ये तो भूल जाता है ना कि बीमार है तो बीमार में तो दूध सूखना ही सूखना है।
3: हाँ।
4: बीमारी तो दूध ही सुखाएगी, अच्छा भला तो चलो दूध ठीक, जब बीमारी हो गया तो सबसे पहला तो उसका प्रोडक्शन उत्पादन पे दूध पे ही फर्क पड़ना है,
3: शरीर कमजोर
4: तो वो तो होगा ही होगा।
3: हाँ।
4: और बीच में आपने दवाई लगा ली तो दूसरे दिन और कम लगता है।
3: ठीक बात,
4: तो कहेगा न कदी जी कल तो 2 किलो था तो एक आधा ही दिया है।
3: हाँ।
4: तो वो तो रोज रोज 2-4 दिन तो जब तक रिकवरी नहीं होती, जब तक वो दोबारा से ठीक पूरा नहीं खाएगा, पूरा जुगाड़ेगा नहीं।
3: हाँ।
4: तब तक दोबारा से दूध पूरा नहीं बनता।
3: ठीक बात है,
4: तो 2-4 दिन का टाइम तो लेगा।
3: बिल्कुल ठीक बात है,
4: तो वही हमारा आदमी सोता है भाई टीके लगे और दूध चला जाएगा।
3: हाँ।
4: ऐसा कुछ नहीं, अब जैसे ये टीकाकरण की आप बता रहे हो।
3: हाँ।
4: टीकाकरण से एक बार आपने ढंग से पशु को टीकाकरण करवा लिया तो 6 महीने तक ऐसी 2-3 घातक बीमारियों से बचा लेते हो, जो आपका पशु तो बचता ही बचता है, आप पूरे गाँव के पशु को भी बचा रहे हो।
3: अच्छा।
4: हाँ, आप समाज में रहते हुए आपका पशु यदि छूट गया और उसमें वो बीमारी आ गई।
3: हाँ।
4: तो वो बीमारी छूतदार है जो कि पूरे गांव में इलाके में फैला सकती है।
3: ओहो।
4: तो अच्छा फिर क्या है, टीका लगाने टीम गई है
3: जी,
4: ता सुबह बैठा हुआ है वो भाई किसान, उठ के यूं नहीं कि पशु को ढंग से पकड़ ले, किस जगह टीका लगाया है वहां पे दबा के उसकी मालिश कर दे,
3: मालिश कर दे,
4: नहीं समझे आप?
3: ठीक बात।
4: तो अच्छा, पशु के पास पशुपालक खड़ा रहता है, उसका मनोबल अच्छा रहता है
3: जी,
4: वो पशु चुपचाप टीका भी लगवा लेते हैं, साथ है
3: वो उसकी मोरी ने पशु
4: अचानक डॉक्टर जाएगा तो वैसे ही वो चिंगर जाता है।
3: ठीक बात है,
4: दोनों में बड़ा फर्क है। और उसकी अच्छी मालिश हो जाए, टीके वाले दिन दो चार दिन उसकी खुराक पे ध्यान दे ले तो दूध भी कम नहीं होता, हमने खूब देखा हुआ है,
3: कुछ दिक्कत नहीं,
4: कुछ नहीं दिक्कत। और गणा था गणा, एक दो किलो दो तीन दिन कम हो गया, छह महीने के लिए जानलेवा बीमारी से तो बच गया,
3: बच गया,
4: वो है बहुत बड़ा काम।
3: बिल्कुल ठीक बात है। हेलो
8: नमस्कार जी।
3: हेलो नमस्कार जी, नाम बताओ।
8: रामफल बोल रहे,
3: रामफल जी दो बंदर दल से बोल रहे हैं, समस्या बताओ जी।
8: एक दोसड़ी भी है जी कल खार के,
3: हाँ
8: तो उसमें दूध बढ़ाने के लिए बताओ जी।
3: दूध बढ़ाने के लिए
4: भाई रामफल चारों थनों से दूध बराबर ठीक आ रहा है अभी फिलहाल?
8: हाँ ठीक है जी, वैसे तो
4: थनों में कोई मतलब तकलीफ नहीं है किसी प्रकार
8: का। सही, कोई ठीक तकलीफ
4: है। तो देखो मैं तरीका बताता हूँ आपको, एक तो चाहे भैंस ने जेर डाल दी चाहे नहीं डाल दी, दस दिन तक सफाई की दवाई जरूर दो भैंस को या गाय को।
8: अच्छा जी,
4: एक सीधी सी बात है कि जितनी बच्चेदानी साफ होगी उतनी ही लोटी चौड़ी बढ़ेगी, ऊपर बच्चे जितनी बच्चेदानी सुकड़ेगी सफाई होगी नीचे लोटी फैलाव करती है। तो 10 दिन तक तो आप इसको बच्चेदानी की सफाई की दवाई सुबह शाम 100-100 ग्राम जरूर पिलाओ।
8: अच्छा,
4: जब आपकी भैंस मैले से चल पड़ी उस टाइम आप इसको थोड़ा सा कैल्शियम और विमराल जो दूध बढ़ाने में एक तुरंत जो है ना जल्दी असर करते हैं वो 10-15 दिन तक इसको कैल्शियम और वो विमराल की दवाइयां दे, विटामिन ए वगैरह की जो आती है जो आप सब जान देते हो।
8: अच्छा।
4: एक इसको साथ साथ और भी अच्छा रिजल्ट आएगा, कैल्शियम के साथ लोहा खून बढ़ाने की दवाइयां आती हैं बाजार में, वो आप इसको जरूर 50 ग्राम रोजाना जो 10 दिन तक।
8: अच्छा।
4: और घर का इलाज के लिए आप इसको मेथी दीजिए 200 ग्राम डेली, और कम से कम भी 1.5 किलो गुड़ आप अपनी भैंस को लगातार 15-20 दिन दीजिए, 1.25 किलो सवेरे 1.25 किलो शाम को, चाहे साबत गुड़ दीजिए चाहे उसको आउटी के रूप में दीजिए।
8: ना वैसे खा ले जी।
4: बहुत बढ़िया, तो ये करिए आप।
8: अच्छा जी।
4: हाँ, और जब कैल्शियम पूरा दूध पे आ जाए फिर रोज कैल्शियम देने की जरूरत नहीं होती, उसके बाद आप इसको खनिज लवण पे ले आना जिससे शरीर की और भी चीजों की पूर्ति होती है, 1.5-2 महीने के नए दूध हो जाए टाइम पे जो है ना क्या बन ठहर जाए वो सब, फिर खनिज लवण शुरू करना बाद में। ये है तरीका। बाखर आप इसको रांध के दे दो, थोड़ा धीरे धीरे रोज बढ़ाओ, एकदम मत बढ़ाओ, और रांध गया उसको गीला करके नरम करके दीजिए, क्यों ब्याता है ना तो पशु का शरीर थोड़ा कमजोर पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा नरम दाना देना चाहिए, तो भिगो के दो 2-4 घंटे या गर्म करके ठंडा करके, उसकी जो है ना पाचन क्षमता जो है ना बढ़ जाए, शरीर पर ज्यादा जोर ना पड़े, पेट पे जोर ना आए, तो वो शुरू करिए आप धीरे धीरे।
8: दलिया ठीक है?
4: बिल्कुल, दलिया बढ़िया है, दे सकते हो आप, मीठा है, उसमें एनर्जी है, ऊर्जा है, दूध बढ़ेगा। हाँ जी, बिनोले की खल डाल दो रांध के, बिनोला जब मैले से छट जाए ना उसके बाद शुरू कर दीजिए आप बिनोले या उसके खल जो।
8: अच्छा।
4: हाँ जी
3: ठीक है जी। हेलो डॉक्टर साहब, शुरू में एक भाई का फोन आया था, उसने जिक्र करा था कि परजीवी चपेट रहे हैं चीचड़ कली लियो।
9: राम राम जी।
3: हाँ जी राम राम, नाम बताओ।
9: बोल बोल बोल। हेलो राम राम जी।
3: हाँ जी राम राम, नाम बता दो।
9: राम राम जी, सिमली गांव से बोल रहा जी।
3: हाँ बोलो जी, समस्या बताओ पशुपालन संबंधी।
9: हाँ जी, समस्या या जी, एक जोटरी है जी, चौथे महीने में नहीं लागी, 4-3 महीने की।
3: अच्छा।
9: थोड़ी सिवा गर्मी महसूस कर रहे हैं जी।
4: नहीं गर्मी वो हाँपती है या फूल फाल दिखाती है?
9: ना जी, उमड़ा मोटा नु वो जड़पड़ापन सा जेरा सा दे दे है जी।
4: अच्छा, जेरा सा दे देती है।
9: हाँ जी, उस मैं बंदी तना रास्ती जी, जी पंचायती बनी पड़ी है ना अपनी बड़ी ये गांव में, उसमें कुली छोड़ दी हूँ, कुली रहा अगर जी 2 बजे थी।
4: ऐसा है बहन जी, ये तो आप गलती कर रहे हो, आप उसको धूप में तो मत रखना कम से कम, ये गर्मी है ना ये बड़ा नुकसान करती है भैंस को। आप हाँ। इसको आप इसको 9 बजे तक तो घुमा सकते हो, उसके बाद गर्मी इतनी शुरू हो जाती है कि फिर पशु को गर्मी से जो है ना उसको नुकसान शुरू हो जाएगा।
9: हाँ जी।
4: शाम को भी जब ठंडा सा हो जाए उस टाइम फिर आप इसको खोल सकते हो, और यदि आपके गांव में जोड़ है तो इसको सवेरे 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम जोड़ में छोड़िए आप इसको, सारी गर्मी जो है ना जो पशु भैंस के जो है ना पसीना इतना नहीं बनता जितना गाय और आदमी के बनता है, तो इसको तो जोड़ ही इसकी गर्मी निकालता है।
9: तीन बार जोड़ में लुटाला जी, एक बार
4: दोपहर को ले जाने की जरूरत नहीं है, वो गलत है आपका तरीका। दोपहर को आप गर्म खाल इसकी जो है ना जलती हुई खाल जाएगी सूरज की गर्मी से, फिर जाती पानी में डुबोते हो और फिर बाहर ठंडा शरीर निकलता है, फिर सूरज की गर्मी पड़ती है तो वो गर्म सर्द में आता पशु, वो नुकसान वो आपकी जो आदत है वो गलत है। सवेरे शाम छोड़ो आप जोड़ में इसको। हाँ, और एक जो ज्यादा जैसे आपको लगता है कि कुछ चिड़पड़ापन सा ऐसा कुछ है तो एक सोडा फॉस की दवाई आती है, सोडा फॉस आधा किलो की बोतल आती है, उसमें चीनी नमक जैसी दवाई है, 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम पानी में घोल के इसको पिला दो तो इसको गर्मी वाली चीज साफ हो जाएगी, 10 दिन तक दे दो।
9: हाँ
4: ये करो आप
9: जी। एक गाय का है ना जी, वो लैम्पी की बीमारी आई थी।
4: हाँ पिछले साल काफी आई थी बीमारी।
9: हाँ जी हाँ पिछले साल, अरे ना जी उसका ना कोई इलाज ना हुआ जी, उसका ब्यान के दिन रह रहे थे, 2 महीने ब्यान के दिन रह रहे थे उसका जब बीमारी आई थी।
4: अच्छा,
9: उसका पैर पाई थी जो गट्टे के गट्टे दौर आई थी जो यो गट्टा हुआ है जी उसका।
4: ठीक है ठीक, आगे बताओ।
9: हाँ जी, उसमें मुआद वो रपिया सा बनकर 3 दिन में फूट गया था जी, फिर उसमें मुआद बन गई थी।
4: ठीक है, फिर
9: मुआद भी जी उसकी दवाई लाला का हमने ठीक कर दी थी जी, उस पर ना थोड़ा सा जख्म रह रहा था वो भर गया जी।
4: अच्छा, फिर अब क्या तकलीफ है बहन जी वो बताओ मेरे।
9: वह गाय पहला था ना अपने मुंह तो आप चाट लिया करती, जीभ तो उन्हें पाट लिया करती।
4: ना ना ना, जीभ से चाटे की तो जख्म जो है ना वो कैंसर का रूप भी पकड़ जाता गाय में, इसमें घोड़ू में इनके जीभ के ऊपर ऐसे जो है ना ब्रश जैसी चीज होती बड़ी सख्त, वो तो कांटे से होते हैं, वो तो छील देगी जख्म को, वो तो बहुत गलत है वो तो। आपको अब तो तकलीफ रह रही, वह बताओ बेबे मेरे को।
9: ना जी उसका ना मड़ी मोटी ना वह भैंस और गाय इकट्ठी बंदे है फोर पे टीका लेना, मैं इसका मौका ला गया जी, हमने धार काट के जी वह गाय उड़े छोड़ दी खोल ना पाए जी, इतनी बार मैं ना वो भैंस ने चाट लिया जी उसका पान।
4: अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसा है, मैं घरेलू इलाज बताता हूँ आपको।
9: हाँ जी,
4: इसको तिलों का तेल और थोड़ा सा हल्दी मिला के इसको सुबह शाम वो लगा दो और चाटने मत दो, जख्म ठीक हो जाएगा।
9: ठीक है।
4: मीठा तेल नहीं बोलते अपन तिला का तेल।
9: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
4: या वो ना हो तो सरसों का तेल भी काम चला देगा, उसमें थोड़ी हल्दी मिलाई है बढ़िया, और सुबह शाम उसको लगा और चाटने मत दो, जख्म ठीक हो जाएगा।
3: इसका छिक्का ला दो और महेश ने थोड़ी सी दूर बांध दो।
9: अजी वो जिंक साइड का वो पाउडर बता था जी, वो 20 ग्राम की वो पुड़िया सी आई थी, 2 मंगाई थी जी।
4: ये देखो, यदि आपको पैसे की दवाई चाहिए तो मैं बताता हूँ, एक टिश्यू एड की गोली आती है, लिख लो। हाँ वो बहुत अच्छी गोली है, 3 सुबह 3 शाम दे दो, 5-7 दिन, बहुत अच्छी गोली है।
3: वो खवा दो हल्दी और तेल वाला उपचार कर दो, इससे चल जाएगा काम, और भैंस ने बांध दो दूर।
9: ठीक है जी, हम हल्दी का रिश्ते का करेंगे वो।
3: ठीक है जी, लग जाएगा आराम जरूर। ठीक है जी, धन्यवाद। हेलो
10: हेलो।
3: हाँ जी, नाम बता दो।
10: नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी,
10: सुरेंद्र सांगवान जी, गांव बिरोज जिला बीन जी।
3: हाँ जी सुरेंद्र जी, बताओ समस्या पशुपालन संबंधी।
10: पशुओं के बारे में पूछना था जी।
3: बता दो फिर।
10: ता एक साल क्यों नहीं जी झोटड़ी रड़ी को नहीं हुआ, तार बड़वे दिखान दी नहीं जी में।
3: अच्छा,
10: तो डॉक्टर के लिए था जी दिखान खातर।
4: हाँ बताओ।
10: पेट के कीड़े गोली दे दी, यार दे दे पहले इस आराम हो जाए, असल में तो ले लेगी।
4: सुरेंद्र, कटड़ी की सेहत ठीक है?
10: हाँ ठीक है जी।
4: वजन पूरा है उसका?
10: हाँ वजन ठीक है जी, छाड़ी है तो।
4: एक पाउडर लिखो, बायोबियोन गोल्ड।
10: बायोबियोन गोल्ड जी?
4: यस, बायोबियोन गोल्ड।
10: आज कितने
4: ये 1 किलो में भी आता है, ये 5 किलो में भी आता है, 20 किलो में भी आता है।
10: अच्छा जी।
4: तो आप इसको कम से कम 2 किलो खिला दीजिए, 50 ग्राम रोजाना और 25-30 ग्राम नमक।
10: गिल्ला नमक ला लें जी?
4: नमक ये जो मोटा अपन पीस के खाया करते।
10: मोटे तो कड़े मिला जी।
4: बाजार में मिलता है, अभी भी कट्टे में आता है।
10: चलो मोटा मिल गया, लिया।
4: हाँ, और इसको 50 ग्राम रोजाना का बायोबियन गोल्ड ये पाउडर खिलाइए, 2 महीने तक खिलाओगे तब तक बारिश शुरू हो जाएगी, उससे पहले मेरे ख्याल से जी सही सेहत है तो हो जाएगी नए दूध ये।
10: ना सही है जी, ठंडी हूँ तो।
4: हाँ तो बायोबियन गोल्ड ले आओ आप।
10: ठीक है जी।
4: ठीक
3: ठीक है जी। हेलो
11: हेलो, राम राम राम सर।
3: हाँ जी राम राम, नाम बता दो।
11: नाम मांगे राम बोल रहा जी, किराल से।
3: हाँ मांगे राम जी, बताओ क्या समस्या है पशुधन संबंधी।
11: हाँ पशु संबंधी है, आज एक बच्ची होगी 40 दिन की, छोटी बच्चिया, वो मट्टी बहुत खावा, उसकी कोई दवाई बताओ डॉक्टर साहब।
4: एक तो मांगेराम जी इसको पेट के कीड़ों की दवाई देनी पड़ेगी पहले।
11: अच्छा जी।
4: एल्बो मार करके बोतल आएगी, या अपने अस्पताल में पूछिए, कई बार सप्लाई भी आ जाती है कीड़ों की दवाई, तो फ्री की मिल जाए तो वो ले लो सरकारी। हाँ। नहीं तो एल्बो मार करके 30 ml की दवाई आएगी।
11: हाँ।
4: पहले तो वो पूरी 30 ml पिलाओ आप इसको।
11: एक दिन में ही?
4: हाँ एक दिन में।
11: अच्छा।
4: ध्यान ये रखना कि बछड़ी को कब्जी नहीं होनी चाहिए, रोजाना एक बार उसको जो है ना अपना गोबर पास करना चाहिए जरूर।
11: अच्छा।
4: उसके बाद एक शार को फेरॉल करके दवाई आएगी।
11: अच्छा।
4: शार को फेरॉल,
11: शार को
4: फेरॉल, जैसे शहद होता है ना ऐसा गाढ़ा लाट सा आएगा, जैसे गुड़ की लाट होती है।
11: हाँ हाँ हाँ।
4: वो इसको 10 ग्राम रोजाना चटाना, 450 ग्राम की सीसी आती है, तो ये समस्या बिल्कुल साफ हो जाएगी, मिट्टी खाना बंद कर देगी और सेहत बन जाएगी इसकी।
11: अच्छा अच्छा।
4: हाँ जी, 10 ग्राम रोज चटाना है वो शहद सा लाट सा।
11: वो शहद से हो गए?
4: शहद नहीं, और शार को फरॉल दवाई गाढ़ी आती है, जैसे शहद होता है गुड़ का लाट होता है ऐसी आती है।
11: अच्छा।
4: तो वो 10 ग्राम रोजाना एक टाइम चटानी है आपने।
11: हाँ
4: हाँ। इतना करना आपकी बच्चिया की सेहत बढ़िया हो जाएगी और मिट्टी से आदत छूट जाएगी इसकी।
11: हाँ मिट्टी छूटनी चाहिए।
4: हाँ छूट जाएगी, छूट जाएगी। ऐसी आती होगी 150-160 रुपए की आती होगी, मेरे ख्याल 30-40 दिन चल जाएगी इसका।
11: अच्छा।
4: हाँ जी
3: डॉक्टर साहब, जिक्र करा था थोड़ी देर पहले जो परजीवी लाग जाए हैं, एक भाई का फोन भी आया था, कुछ भाई के करे हैं कपड़े धोने का साबुन या अपना जो नहाने का साबुन कोई सर्फ का पानी इस डाल का उसके पशु का पोछा लगाने की कोशिश करें कि ठीक सही तरीका?
4: बिल्कुल गलत है, उसका कोई काम ही नहीं है।
3: हाँ
4: कोई काम नहीं है।
3: अच्छा।
4: खाली खाल को खराब करते हो आप। पशु को ये जिसमें ये कार्बोलिक एसिड वगैरह है ये कई बार बड़े नुकसान भी करते हैं।
3: हाँ।
4: खास तौर पर जैसे कुत्तों में आपने यदि ऐसा साबुन लगा लिया तो खुजली होनी होनी लाजमा है।
11: हेलो।
3: हाँ। हेलो। हाँ जी।
11: चुमाना बाद में लेनी है वो दवाई पहले?
4: वो डब्बे दे देना भाई मांगेराम।
11: हाँ जी।
4: किसी भी टाइम दिन में एक बार 10 ग्राम दे देना, और वो जो कीड़ों वाली है वो भी दूध पिलाने से 1 घंटे पहले दे देना।
3: ठीक है जी। ठीक है। तो जिक्र हम कर रहे थे, जो करे आपने बताया कि ये इस तरह का ना कोई प्रयोग करके देखें।
4: ना ना, ना।
3: बल्कि जो तेल की मालिश है वह कितनी कारगर सिद्ध है? सरसों का तेल है जो कर शरीर पर का मालिश कर दिया करें।
4: यदि आपको खारिश कहीं लगती है तो सरसों के तेल की जरूरत है।
3: हाँ।
4: नहीं तो शरीर की खाल में चिकनाई जो कुदरत ने दे रखी वही बहुत होती है।
3: जरूरत नहीं
4: अलग से कोई चिकनाई गुर्दी है, जो शोबाजी में ले जाते हैं मेले में।
3: हाँ।
4: कंपटीशन में सुंदरता जो सौंदर्य प्रतियोगिता। हाँ। होती है इसमें वो थोड़ी चमक धमक के लिए लगाते हैं, नहीं तो रोज तेल लगाओगे मिट्टी पकड़ेगी।
3: सिंग शंगा लाग लीजिए अपना दिखाने
4: का। हाँ। शौक है उसका, कोई पर्पज है ही नहीं।
3: अच्छा डॉक्टर साहब, परजीवी का आत तोड़न का तरीका यू के है? मतलब
4: कोई तोड़ने की जरूरत नहीं। कितनी तोड़ोगे आप? एक चिचड़ है। हाँ। वो 3000 अंडे देती है, कितनी तोड़ लोगे आप?
3: अच्छा।
4: उसका तो इलाज है कि आप उसके शरीर के चिचड़ और वो जुई खत्म करिए।
3: हाँ।
4: और उसके ठाण में जहां आप बिठा रहे हो बाहर या भीतर।
3: हाँ।
4: उसका भी उससे ज्यादा जरूरी वो है।
3: वो है
4: क्योंकि इसकी 4 अवस्था होती है चिचड़ की।
3: अच्छा।
4: 2 अवस्था तो मालिक को नजर भी नहीं आती, खून पी के उतर चुकी होती है।
3: अच्छा जी।
4: वो तो 3री अवस्था में उसको थोड़ा दिखने लगती है कि जूई जूई सी होगी ये छोटी छोटी।
3: हाँ।
4: तो वो तब तक तो बहुत लेट कहानी है।
3: अच्छा। तो इसका तोड़न का भी कोई
4: धन नहीं है। पहले ये था कि भाई बाहर बनते थे।
3: हाँ।
4: तो जो चिड़िया उड़िया होती थी काबर वगैरह।
3: हाँ।
4: वो वैसे वैसे साफ कर देती थी।
3: हाँ ठीक बात है।
4: तो बाकी तोड़ने वाला तो कोई वो उचित नहीं, तो कितने तोड़ोगे आप?
3: इसका कोई ईसा तरीका जो शरीर के अंदर दवाई दी जा सके लग गई ना, ऐसा
4: ऐसी भी है? आयरमेक्टिन करके जैसे गोली भी आता है, टीका भी आता है,
3: आयरमेक्टिन
4: आता है या डेक्टोमैक्स आती है, डेक्टोमैक्टिन।
3: अच्छा,
4: वो इंजेक्शन लग जाए तो 40 दिन तक वैसे भी नहीं लगती,
3: वो नुकसानदायक तो नहीं है?
4: ना नुकसान नहीं, मात्रा सही होनी चाहिए।
3: हाँ।
4: वो दो 2% में आता है, एक आता 1%, 1%, एक आता 3.25%। ज्ञापन को कई बार वो 3.25% नुकसान कर जाता है।
3: अच्छा,
4: वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि पशु यदि ज्ञापन है तो 1% से ज्यादा आगे ना बढ़ो।
3: ठीक।
4: और एक उसकी मात्रा का तरीका है कि 50 किलो पे 1 ml टीका लगना चाहिए।
3: अच्छा,
4: यदि आपकी गाय भैंस लगा लो 450 तक की है तो लगभग 9.5 ml, 10 ml ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा लगाने में गड़बड़ है और कम लगाने में भी गड़बड़ है।
3: हाँ हाँ हाँ।
4: तो 50 किलो के रेशो से 1 ml दवाई खाल के नीचे कभी भी।
3: हाँ।
4: भाई दलजीत, ये पुरानी सीरिन सुई से नहीं लगना चाहिए।
3: अच्छा,
4: इसके लिए सीरिन सुई बिल्कुल नई होनी चाहिए, खाल के नीचे टीका लगता, नहीं तो फोड़ा बन जाएगा,
3: नुकसानदायक साबित
4: होगा। वो ऐसा फोड़ा बनेगा और 6 महीने तक जो है ना पशु बेचारा दुखी हो जाता है।
3: अच्छा,
4: नई सीरिंज, नई सुई और 1 ml पर 50 किलो।
3: अनुभवी डॉक्टर से बात करें,
4: बिल्कुल डॉक्टर कभी गलती नहीं करेगा।
3: हाँ,
4: वो खुद करते हैं कई बार, क्या होता है ना जैसे एक बार टीका लगाना देख लिया।
3: हाँ।
4: वो शाणपत करते फिर खुद करते हैं अपना प्रोग्राम,
3: अगले क्या डॉक्टर बुलाना, हाँ पिला के देख
4: लिया। तो वो फिर भागेगा, जी टीका लगाया था ये तो नाड़ इतनी सूज गई।
3: हाँ।
4: वो गलत बड़ा, वो उन्हें काम करता।
3: हाँ।
4: और पशु को वैसे फोड़ा बना के जो है ना दुखी करना है।
3: ठीक बात है।
4: हाँ जी,
3: तो चलो ये तो बात है जो शुरुआती दौर में जो बात हुई थी भाई की समस्या भी थी, फिर ये मुख्य समस्या एक और बन रही है। इब देखे हैं कि पशु ले लिया, जैसे ही वो 2 दिन लग रहा है, कुछ दिन के बाद एक बड़ी भयंकर समस्या होगी लगभग पशुओं के साथ आ जाए है कि थन में दिक्कत की। चलो जेकर उसका भी करेंगे, एक श्रोता लाइन पर है शायद। हेलो
12: हेलो,
3: हाँ जी, नाम बताओ।
12: रामधारी फोगाट बोल रहा जी। राम राम।
3: रामधारी जी, राम राम, बताओ समस्या क्या है पशुपालन संबंधी?
12: समस्या कुछ नहीं जी, ये है कि ओखड़ी पहली बार पे आओगी 21 तारीख 22 तारीख का 9वां महीना में लग जाएगी।
3: अच्छा,
12: उसके खान पान के बारे में पूछना है।
3: चलो,
4: एक तो रामधारी भाई, उसको आप जितना दाना दूध वाले पशु को देते हो ना उससे थोड़ा कम, आधा उसको दाना रोज मिलना चाहिए।
12: दूध वाला तो सब कुछ है, मैं तो 5 किलो दिया।
4: हाँ, तो 2-2.5 किलो, वही तो मैं कह रहा हूँ, 2.5 किलो के आसपास, 2 से 2.5 किलो तो उसको दाना मिलना ही चाहिए रोज। हाँ, दूसरा क्या है, जैसे जैसे आगे बच्चे की जो है ना साइज बढ़ेगी तो पेट जो चारे वाला पेट है वो दबाव खाने लग जाता है, तो उसमें पशु कम खाता है और वो जुगाड़ी भी पूरी नहीं कर पाता। उसके लिए आप इसको रोजाना 100 ग्राम सरसों का तेल शुरू कर दो देना,
12: कच्चा पक्का,
4: इसके बाखर में रनते में डाल दो, अपने आप पक जाएगा, वो सारा ठीक हो जाता काम। अलग से डाल दो थोड़ा सा आटा या कोई खड़ या बेसन बुरका देना, आप पे चढ़ जाता तेल, पशु राजी हो गए। नाड़ देने की जरूरत नहीं है, तेल की नाड़ चलेगी तो वो बड़ी घातक है।
12: ना ना, वैसे खा।
4: और 100 ग्राम कितना होता है, चाय वाला छोटा कप रोज का आप इसको आदत बना लो, वो दीजिए आप इसको, घी का देने की जरूरत नहीं है, तेल ज्यादा अच्छा लगता है भैंस को।
12: अच्छा,
4: और एक इसको जब 1 महीना ब्याणे का रह जाए तो कुछ लोटी बनाने के लिए आजकल बाजार में अच्छी दवाइयां मिलती हैं, वो शुरू कर देना जब महीना रह जाए।
12: अच्छा,
4: अभी तो पौने अभी तो 9.25 महीने की है,
12: लगेगी
4: वो 9.25 की है, मैं समझ गया, आज 15 तारीख आप 22 से बता रहे हो
12: जी। हाँ।
4: तो 9.25 की है तो और 15 दिन पास है, कुछ दवाई है जैसे वाइटम एच है या विमराल है, ये दवाइयां 10 ml रोटी चौपड़ के रोज ब्याणे तक दे देना आप इसको।
12: 10 ml जी,
4: ज्यादा देने की जरूरत नहीं है
12: ना, वो तो जितनी।
4: हाँ, और यदि इसको फूल फाल दिखाने की शिकायत है या आपको लगता है कि कोई थन में कुछ पहले गड़बड़ हुई थी, कुछ कमी रह गई थी, ऐसा कुछ है तो कुछ दवाइयां हैं जो ब्याणे से 20 दिन पहले रोज का 1 पैकेट खुआना है, जैसे आती है एक मेटाबोलाइट, 50 ग्राम की 20 पुड़ी आती है रोज की, एक देनी होती है मेटाबोलाइट,
12: वो तो ठीक है, ये तो पहली बार में आएगी नहीं।
4: हाँ, तो पहले बार में आएगी तो बढ़िया है, आप इसको अभी दाना दीजिए, महीना करे जाए तब उसको विमराल या वाइटम एच ऐसी दवाई देना 10 ml रोज की।
12: हाँ।
4: ठीक है जी, और अपना जो 2-2.5 किलो उसको राशन दीजिए।
3: ठीक है जी। हेलो डॉक्टर साहब, जो थनकी, हेलो,
13: हाँ जी राम राम।
3: हाँ जी राम राम, नाम बता दो।
13: सत्यपाल सिंह, मुझे खंडवा से बोल रहे जी। आज पशु जगत है जी, कृषि जगत।
3: हाँ, पशुपालन संबंधी।
13: अच्छा जी, अच्छा। एक कटिया जी हमारे पास 2.5 साल की हो गई, और उसका अगला पैर सूज रहा जी।
4: किस जगह से सोई खा रहा है, उसमें दर्द है या दर्द नहीं है?
13: देखो तो दर्द नहीं, जब चला, जब अगर दबाओ तो दर्द बना।
4: किस जगह है दर्द, है कौन सी जगह है वो सोई जो आप बता रहे हो?
13: मोरेमा जी, अपने पैर के मोरेमा।
4: मोरा किसको?
3: मोरा निचला हिस्सा जो खुर तो ऊपर है।
13: हाँ, खुर से ऊपर।
4: अच्छा अच्छा अच्छा,
13: हाँ जी।
4: अच्छा, तो चलते समय लंग भी करता है, लंगड़ाता भी है?
13: ना जी, लंगड़ाता नहीं, जब चला, जब नहीं लंगड़ाता, अगर उसे दबाएगा देखा कुछ है या नहीं।
4: अच्छा अच्छा,
13: तो दर्द 10 दिन हो गए करीब।
4: एक गोली लिखी, आप लिख लोगे?
13: बताओ। हाँ जी बता दो।
4: एक टोल फी काइंड MR करके गोली आती है, टोल फी काइंड MR।
13: टोल फी काइंड MR।
4: हाँ, टोल फी काइंड MR।
13: ठीक है जी। ये, बाकी दिन देनी जी?
4: ये 2 गोली रोजाना दे दीजिए, 4-5 दिन।
13: अच्छा जी, अच्छा।
4: हाँ, और यदि ताजा है तो ठंडी पट्टी बांधिए इसको, बर्फ की, और अच्छा। कुछ दिन ज्यादा हो गए हैं तो फिर उल्टा करना पड़ेगा, आयोडेक्स लगानी पड़ेगी इसके ऊपर।
13: 10 दिन हो लेंगे।
4: हाँ, तो आयोडेक्स लगा सकते हो।
13: अच्छा जी, अच्छा।
4: हाँ, और टोल फी
13: का 2 गोली
4: रोज दे दो, 4-5 दिन।
13: ठीक है जी, धन्यवाद जी, बहुत अच्छा। बहुत आपका।
3: ठीक है जी। हेलो।
13: ठीक है जी।
3: हेलो डॉक्टर साहब, जिक्र करे थे ये जो नाड़ देने वाला जिक्र आया था ना, हमने भी ऐसा देखा है, कहता भाई नुमे सुरसा हो जाया कर दे, भाई यू नाड़ देतेगा। और उनका हमने तरीका देखा ना, मान लो मेरे जैसा को नहीं नाड़ दी गई, भाई फलाने आई एक महस्ती नाड़ देनी है, वो आंदे दे दे, और वो जीभ पकड़ दे, देखे हमने।
4: नहीं, कायदे से जो जीभ है ना,
3: हाँ,
4: वो है जो आपके खाने को आगे पीछे एडजस्ट करती है।
3: हाँ,
4: यदि वो आपने दबा दी,
3: हाँ,
4: वो जीभ से पूरा अच्छे से नहीं दबाता।
3: हाँ,
4: वो उसको एक बार नाड़ को सेट करने के लिए ही दबाता है वो।
3: अच्छा,
4: ये नहीं कि उसको ऐसा बांध ले कि कभी हिल ही नहीं सके।
3: हाँ,
4: वो जीभ क्या है ना, वो नाड़ के सामने आ गई तो दवाई नहीं छूटेगी।
3: हाँ,
4: उसको काबू करता है खाली।
3: अच्छा,
4: बाकी तो जीभ ऐसे दबानी नहीं चाहिए, ये गलत होता है,
3: दबानी नहीं चाहिए
4: ना, वो उसको गलत भी जा रही होगी तो जीभ उसको रोकती है।
3: हाँ,
4: वो एक ऑर्गन है जो काबू करता है कि गलत रास्ते, 2 रास्ते हैं,
3: ठीक,
4: एक चारे का, एक दाने का है
3: जी,
4: राशन का, एक सांस का है, वो दूसरे में चढ़ जाएगी। तो आप उसको, एक कभी भी नाड़ जब तक पशु खूब सर को जैसे आपको मदद नहीं करने लग जाता, गर्दन को हिलाने नहीं लग जाता,
3: हाँ,
4: अंदर थोड़ी जीभ मतलब हिलाने नहीं लग जाता,
3: हाँ,
4: आपको महसूस करा देता कि अब ये लेने के लिए तैयार है,
3: ठीक बात,
4: उस टाइम उसको धीरे धीरे देनी चाहिए, नाड़ को थोड़ा थोड़ा सा बाएं दाएं हिलाते रहना चाहिए जिससे दवाई छूटती रहे
3: जी,
4: ये इसका सही तरीका है।
3: मतलब न्यू निकल जितनी दवाई है
4: एकदम, वो गलत है,
3: गलत तरीका,
4: वो यदि रास्ते में गलत चल गई तो पशु उसी टाइम मर भी सकता है, उसी वक्त मर सकता है,
3: बड़ी समस्या।
4: आप विश्वास नहीं करोगे, अस्पताल में भी मर जाते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल भाई, इस चीज का भी ध्यान करें। और मुख्य,
4: और इसमें हंगापाई करने की जरूरत नहीं होती।
3: हाँ,
4: यदि कोई कोई पशु हमारे से भी नाड़ अस्पताल में भी नहीं लेता,
3: और वो भी बांधने के बाद है।
4: बिल्कुल नहीं लेता।
3: हाँ,
4: आपको मुंह पे हाथ ही नहीं लगाने देगा, चोट खा सकता है
3: जी,
4: वो गिर के जो है कंडेम भी हो सकता है
3: जी,
4: इसलिए उसको यदि मदद करे तो नाड़ देनी चाहिए, नहीं तो उसको गाली बना के दे दो, कभी नुकसान नहीं करेगी।
3: अच्छा, और दूसरा
4: थोड़ा लेट हो जाएगा,
3: बिल्कुल,
4: या उसको तसड़े में कोई लालच की चीज के साथ मिक्स करके खिला दो।
3: हाँ,
4: इस तरीके से करना ज्यादा उचित है।
3: लोभ दे दे उसने, वो खा,
4: पशु लोभ है,
3: ठीक बात है,
4: उसमें खा जाता है।
3: चलो, मुख्य एक बात का जिक्र करा था, फिर बीच में फोन आने शुरू हो गए थे,
4: थनका।
3: अब थन की समस्या आप भी समझो हो, अब तो बहुत लंबा अनुभव हो रहा है आपका, तो पहले कम थी, बहुत ज्यादा होने लग रही है। पहले तो जिक्र इससे बात का कर दे, कारण क्यों हो रहा है?
4: मोटा कारण बताऊं आपको।
3: हाँ,
4: जैसे अपन शुरू में बात कर रहे थे कि प्रतिरोधक क्षमता,
3: वो
4: शरीर के हर अंग की अपनी क्षमता है।
3: अच्छा जी।
4: किसी किसी आदमी को खुजली बहुत होती है।
3: हाँ,
4: किसी को सर्दी जुखाम बहुत, खांसी बहुत जल्दी होगी,
3: ठीक बात।
4: किसी को जो है ना बुखार बहुत बार बार होता है। ऐसे ही ल्योटी की भी अपनी एक प्रतिरोधक क्षमता है। आप कभी कभी देखोगे एक भैंस 25 किलो वाली है।
3: हाँ,
4: लेकिन जिंदगी में कभी थनेला रोग नहीं होगा, जो थन का रोग होता है,
3: ठीक बात।
4: और एक 4 किलो की ल्योटी ले रही है, 2 किलो की, उसको बार बार थन खराब होता है
3: जी।
4: तो वो उसकी एक तो इम्यूनिटी, नंबर दूसरा, पहले क्या था कि लोग कच्चे में बांधते थे।
3: अच्छा जी।
4: ठाण हमारे कच्चे होते थे, उसको रोज झाड़ू और जो है ना सफाई करते रहते थे।
3: हाँ।
4: और रोजाना मिट्टी डलती रहती थी और कच्चा होता था। उसमें क्या होता है, पशु उठता बैठता है दिन में कई बार, तो गलती से भी उसके पैर से या खुर के नीचे थन आ गया।
3: हाँ।
4: तो मिट्टी होती थी तो वो उसका शॉकर का काम करता था, वो थन दबके और बच जाता था,
3: मट्टी में चला जाता,
4: मिट्टी में घुस जाता था।
3: हाँ।
4: तो वो उसका बचाव हो जाता, तब तक पशु संभल जाता था।
3: हाँ।
4: कि दर्द हो रहा तो रुक जाता था।
3: ठीक बात है।
4: अब हुए सारे पक्के ठण, हरे को चाहिए हुए गोबर टाइम पे निकल जाए, फटाफट प्रेशर के पानी से पेशाब धुल जाए।
3: हाँ।
4: तो वो ये जो पक्के ठाण है, अब ये नीचे से तो कोई बचाव की गुंजाइश है ही नहीं।
3: ठीक बात।
4: जो उसकी रगड़ में उठते बैठते समय लगा।
3: हाँ।
4: और वो ही कटा हुआ और वो ठण गया,
3: उसमें घाव बन जाए,
4: उसमें जख्म बढ़ेगा, ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक हो गया दूध नहीं निकलेगा, थनेला रोग पकड़ जाएगा।
3: ठीक बात है। ईबीए जो गद्दा का बिछाण का प्रचलन चल गया,
4: नहीं ज्यादा मैं इसके हक में नहीं हूँ, सबकी अपनी अपनी राय है।
3: हाँ।
4: आप कभी भी देखना पशु गद्दे पे बैठती है तो वो उसको पसीना आता रहता है हर टाइम।
3: श्रोता लाइन पे है। हेलो।
14: हाँ, नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी, नाम बता दो।
14: बंसीलाल भट्टू कला से। क्या विषय जी आज है?
3: विषय है जी पशुपालन का।
14: पशुपालन?
3: हाँ जी
14: जी। भैंस 7-8 महीने की बेवड़ी है जी, आगे को नहीं हुई जी।
3: 7-8 महीने की ब्याई ओडोली?
14: हाँ जी।
3: कौन से है इबके?
14: हाँ जी।
3: ब्याई ओड कौन से है, दूसरे तीसरे?
14: तीसरा है जी।
3: तीसरे।
4: ये भाई ऐसा है, पशु के टाइम पे नए दूध होने के दो तीन मोटे कारण। एक तो ब्याह इसका बिल्कुल सही था, अपने आप ब्याई थी।
14: हाँ जी, ब्याई तो अपने आप ही है।
4: जेर टाइम पे डाली थी।
14: हाँ, जेर भी ठीक पड़ गई थी।
4: उसके बाद जो सफाई होती है 10-12 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो साफ हुई थी भैंस।
14: वो जी कोई रिश्तेदार
4: जिसको जिसको हम बोलते हैं ना मैला छटना, भैंस बराबर मैला से छटी थी।
14: ये पूरी जानकारी तो कोनी जी।
4: यदि ये सारी चीजें जो मैंने पूछी है यदि ये सही हैं, तो आप उनको बताइए कि कुछ नए दूध होने की बहुत अच्छी दवाई बाजार में है। जैसे एक तो स्ट्रप करके गोली आती है।
14: हाँ जी।
4: वो एक गोली रोज देनी है इसको, 21 दिन तक का कोर्स आता है स्ट्रप।
14: स्ट्रप?
4: हाँ जी, स्ट्रप। या एक गोली आती है फर्टिसूल, वो भी 21 दिन का कोर्स आता है, वो रोज की 5 गोली देनी है, वो लिखा होता है उस पर पैकेट के ऊपर।
14: हाँ जी।
4: तो इस टाइप की दवाइयां आप कम से कम 1 महीने तक 20 दिन तक उसको खिलाइए, फिर भी ना हो तो एक बार उसकी गोबर की जांच और डॉक्टर साहब से उसके अंदर से जो है ना बच्चेदानी चेक करा लीजिए।
14: हाँ जी, हाँ जी,
4: हाँ जी।
3: ठीक है जी।
14: ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद जी। हेलो। हेलो,
15: नमस्कार जी।
3: हाँ जी नमस्कार, नाम बताओ।
15: चरण सिंह है साहब।
3: चरण सिंह कहाँ से बोल रहे?
15: बामड़ा से।
3: हाँ जी बताओ, क्या समस्या है?
15: समस्या यह है जी, एक झोटड़ी है।
3: हम्म।
15: वो एक दिन तो वो साफ बच गए और वो गिर दिए बंदोड़े।
3: अच्छा।
15: वो नहीं टेका, वह सारी सरनी फिर काट की ना कीड़े पड़ गए नीचे, फिर बार बगा के आए दलियार या ना बंदोड़े, ये भी जमा है कम खास है जी।
4: जुगाड़ी करती है ये करण सिंह भाई?
15: जुगाड़ी तो करे है जी।
4: गोबर ठीक आ रहा है? ऐसे कब्जी और टाइप का गोबर तो नहीं है
15: ना? गोबर भी सही आवर।
4: तो एक ब्रोटोन करके दवाई आएगी, लिख लो आप ब्रोटोन।
15: एक
4: लिखो, लिखो
15: के ब्रोटोन।
4: ब्रोटोन, BROTONE, ब्रोटोन। याद है, लीटर की बोतल आती है, एक चाय वाला कप 100 ग्राम, इसको 5 दिन दे दीजिए, पूरा खाने लग जाएगी।
15: अभी बताइयो सर जी।
4: ब्रोटोन एक
15: सप्ली बताइयो।
4: BROTONE
15: ब्रोटोन।
4: यस, ये आप अच्छा, इसको 100 ग्राम एक चाय वाला छोटा कप रोजाना 5 दिन।
15: 100 ग्राम?
4: हाँ जी।
15: लिक्विड है?
4: लिक्विड है जी, लिक्विड है।
15: अच्छा, लिक्विड है।
4: हाँ जी।
15: 100 ग्राम?
4: हाँ जी।
15: इसने एक बात और बताओ जी, या कीड़ा की गोली
4: देता? दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते?
15: अजी
4: बिल्कुल दे सकते हो। ज्ञापन है या खाली है? नौवे में है ना, तो एक इसको पैना क्योर की गोली आएगी 3 ग्राम की, वो देना खाली पेट।
3: हेलो हेलो, लाइन कट गई जैसे श्रोता। अच्छा बताओ, फिर भी आगे सुन रहे होंगे तो रेडियो।
4: पाना क्योर की गोली आती है 3 ग्राम की, वो खाली पेट इसको दे दे, उसके 2-3 घंटे के बाद चारा डाल दे।
3: अच्छा जी,
4: दे सकते कीड़े की, ऐसा नहीं कि क्या बने तो दे ही नहीं सकते,
3: नहीं दे सकते,
4: और देनी भी चाहिए।
3: हाँ दे सकते हैं।
4: हाँ जी
3: बिल्कुल। हेलो,
15: ओ कट गया था जी फोन, वह बताइए गोली कुर्सी का।
4: पाना क्योर PANACUR
15: PANACUR
4: पैनाकुर या पैनाक्योर PANA पी पीकॉक वाला पी, पंखे वाला पी।
15: अच्छा पी,
4: हाँ
15: PANA
4: हाँ CUR पैनाक्योर PANACUR
15: PANACUR
4: हाँ 3 ग्राम की गोली।
15: एक गोली है जी,
4: ये 1.5 ग्राम की आएगी, मिलेगी आपके उसमें बामड़ा में तो 2 ले लेना, और 3 ग्राम की मिल जाए तो 1 ले लेना, खाली पेट दे देना।
15: क्या ग्राम चाहोगे जी?
4: 3 ग्राम की भी आती है और ये 1.5 ग्राम की भी आती है, तो आपको देनी 3 ग्राम है।
15: अच्छा 3 ग्राम।
3: हाँ, 3 ग्राम वाली मिल जाए तो 1 दे दियो, और जब 1.5 ग्राम वाली मिले तो 2 दे दियो।
15: अच्छा अच्छा जी।
3: हाँ जी।
15: अच्छा या मतलब 1 देनी है जी?
3: हाँ
4: 1 दे दो, 3 ग्राम मात्रा होनी चाहिए।
15: अच्छा जी ठीक हो, तो बढ़िया ठीक है,
3: ठीक है जी, ठीक है जी,
15: राम राम
3: राम राम। हेलो हेलो हेलो,
16: राम राम जी।
3: हाँ जी राम राम, नाम बताओ, कौन बोल रहे हो?
16: नाम है जी बजीर, गांव सिरटा जिला कैथल से बोल रहा हूँ जी।
3: हाँ जी, समस्या बताओ।
16: समस्या कटड़ी है बुरी, उसका दस्त लग रहे हैं, 2 महीने हो गए।
4: कितनी बड़ी कटड़ी है वजीर भाई?
16: 8 महीने की होगी जी। वाह।
4: अच्छा अच्छा, एक तो इसको आप हेलमी साइड की दवाई आएगी लिक्विड 30 ml लिख लो आप।
16: अच्छा जी,
4: हेलमी साइड।
16: हेलमी साइड,
4: हाँ DS डबल स्ट्रेंथ DS, ठीक है?
16: ठीक है जी।
4: 30 ml ये तो पहले तो ये पिलाई आप शीत में घोल के, लस्सी में घोल के।
16: अच्छा जी।
4: उसके बाद टेरामाइसिन की गोली आएगी 500 मिलीग्राम की, एक गोली आती है टेरामाइसिन।
16: अच्छा जी।
4: एक गोली सुबह एक गोली शाम, 4 दिन लगातार खिलाइए आप इसको, 10 ठीक हो जाएंगे।
16: अच्छा जी।
4: जी
3: ठीक है जी,
16: ठीक है जी, धन्यवाद जी आप।
3: अच्छा। धन्यवाद। हेलो डॉक्टर साहब, गद्य का जिक्र करे थे, गद्दे पे भाई अपने शौक खतर बांधते हैं, बगनी से को बात नहीं करनी पड़ेगी, उस पर सफाई ठीक डाल हो जाए, लेकिन देखें कुछ भाइयों के गद्दों के नीचे इतना बुरा हाल पाओ है, उस तो बढ़िया तो मेरे ख्याल में वो गद्दा ना ही
4: बचा। नहीं आप देखना भैंस का, एक तरफ ऊपर की तरफ काले बाल है, नीचे सफ़ेद है।
3: हाँ
4: गड़ जाते हैं, पेशाब है वो, दिन भर यूरिया यूरिक एसिड उसके गीला जमा रहता है।
3: हाँ।
4: खाल को भी खराब करता है, बाड़ों का रंग भी बदलता है।
3: ठीक बात है।
4: और नीचे भी पसीना आ गया तो वो भी नहीं सूखता।
3: ठीक बात है।
4: ये सब हम हमारी सुविधा के लिए कर रखे, पशु को सुविधा नहीं चाहिए, ये सबने अपनी सुविधा कर रखी है।
3: बिल्कुल, हम अपनी सुविधा खातर इस तरह के तरीके अपनाने लग रहे हैं और पशु उस तो परेशान हो रहे हैं।
4: नहीं पशु को तो देखो, ताजा साफ मिट्टी में बैठ जाए, को मिल जाए तो स्वर्ग है।
3: ठीक बात है। चलो यो जो कराया वापिस उसी बात पे फिर आ, हाँ कि थन की समस्या मान लो आ गई, लग्या कि भाई कोई इस तरह की समस्या है, थन लाल दिखा, दूध का रंग कुछ बदला और दिखा, तो पहला कदम अपने पशुपालक भाई की ठान।
4: दलजीत भाई, थन के 2 टाइप के रोग आते हैं।
3: हाँ।
4: एक तो आएगा तेज आता है जिसको एक्यूट बोलते हैं हम।
3: अच्छा।
4: उस तेज में तो बुखार बनेगा, थन पे सोजस आएगी।
3: हाँ।
4: लाल हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, उस तरफ से लंगड़ाएगा जिस तरफ की थन की सोई आ रही है।
3: हाँ।
4: ये काम है तो बर्फ लगाओ, ये सबसे पहले डॉक्टर भी चाहे बाद में बुलाओ आप।
3: अच्छा।
4: उल्टा कर रहे हैं।
3: हाँ।
4: जो गर्माइश ला रहा है, बुखार बढ़ा रहा है शरीर में, तो समझो उस जीवाणु को गर्मी पसंद है, उसको। हाँ। बर्फ लगाओ आप।
3: हाँ।
4: तो बर्फ लगाओगे तो उसकी ग्रोथ वहीं रुकने शुरू हो जाएगी।
3: अच्छा।
4: जैसे हर 1.5 घंटे में जीवाणु डबल होते हैं।
3: हाँ।
4: यदि आपने 8 बजे देखा 9:30 बजे तक, तो उसमें डबल क्यों हो जाएंगे, 1 लाख जीवाणु है तो 2 लाख, अगले घंटे डेढ़ में 2 से 4 लाख, तो वो इतनी तेज गति से बढ़ते हैं कि आप उसको एक बार चेक, ठंडा बर्फ,
3: हाँ,
4: टकोर जिसको बोलते हैं, उस हिस्से पे बार बार घंटों तक आप टकोर करिए, और जो उसके अंदर जीवाणु का असर आ गया उसको हर 2 घंटे 1.5 घंटे में जो धार बने उसमें उसको निकालते रहिए,
3: साफ करते रहिए,
4: बहुत बढ़िया इलाज है ये, और तुरंत घंटे 2 घंटे के अंदर डॉक्टरी इलाज शुरू हो जाना चाहिए, नहीं तो थरण चला जाता,
3: दिक्कत बड़ी आ जाएगी अगर जाएगी।
4: बिल्कुल आ जाएगी।
3: फिर चलो आप आमन्यू कर लें, कोई दिक्कत आ गई, आप जैसे अनुभव के डॉक्टर बुला लिया, फिर वो जो सलाह दें उसके हिसाब तक कई बार हम इंतजार को नहीं कर पाते, हमने सोचा तुरता फरती कोई सी दवाई लग गए वो काम कर दे,
4: यदि देसी देना

0: अच्छा
1: हाँ, मुस कपूर है, पूजा वाला कपूर,
0: हाँ
1: जिसमें अपन हवन में अग्नि लगाते हैं,
0: जी
1: उसकी दो टिक्की छोटी वाली केड़े में फिट करके वो दे, वो भी जीवाणु की ग्रोथ को रोकता
0: अच्छा,
1: है। हाँ,
0: संक्रमण रुक जाएगा।
1: संक्रमण रुकता है उससे,
0: अच्छा जी
1: इलाज संपूर्ण से तो नहीं करेगा
0: हाँ
1: लेकिन उसकी बढ़ोतरी रोक देता है।
0: अच्छा
1: फिर बढ़ोतरी रोक दी, कुछ दवाई या तो दवाई पहुंच जाएगी टाइम
0: हाँ
1: पे, या शरीर की क्षमता भी फिर शुरू करती है,
0: अच्छा
1: तो वो फिर काबू आने लग जाता है।
0: अच्छा
1: और ये बहुत जरूरी है दलजीत भाई, कि दूध हर 1.5 घंटे में उस स्तन का बार बार निकलना ही चाहिए, नहीं तो आपकी जेब ज्यादा कटेगी और दूध का नुकसान ज्यादा होगा।
0: साफ रहना चाहिए वो थाना।
1: वो बार बार उसमें बढ़ोतरी होने का मौका ही ना दें,
0: अच्छा
1: 1.5 घंटे में उस गंदे दूध को, उसमें छिलड़े हैं, खून है, राध है, जो भी है, उसको हर 1.5 घंटे में निकाल के ठाण में कभी नहीं डालना चाहिए, उसको नाड़ी में,
0: नाड़ी में डालना है,
1: बिल्कुल, ये है तरीका।
0: संक्रमण का
1: और
0: खतरा।
1: उस जो दूध के उसके थन के अणी पे जो दूध लगा रह गया उसको भी साफ करते रहे, नहीं तो कोई दूसरे थन के लगेगा वो नुकसान करेगा।
0: जी, एक थन में दिक्कत आ जाए तो दूसरे में
1: नमस्कार
0: अपने
1: जी,
0: आप आ जाया करे। हेलो,
1: नमस्कार जी,
0: हाँ जी नमस्कार, नाम बताओ।
1: वेद प्रकाश वर्मा जी पप्पोस्ता से।
0: हाँ जी बताओ समस्या वेद प्रकाश जी।
1: बार खेती बाड़ी संबंधी है जी? आज
0: नहीं, पशुपालन संबंधी है।
1: पशुपालन है,
0: हाँ जी
1: खेती बाड़ी के बारे में पूछ रही थी।
0: चलो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते फिर
1: देख लो,
0: बैठेंगे
1: सिद्धों की
0: फिर।
1: न्याय के अंदर से है,
0: हाँ?
1: उसको घी दे दिया जी।
0: घी? घी नहीं, उससे अच्छा है सस्ता तेल दीजिए आप उसको 100 ग्राम रोजाना।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: दूध तो छोटी है वैसे। बहुत बढ़िया है, 100 ग्राम 75 ग्राम रोजाना तेल देने लग जाओ, उसके बाखर में, चारे में, कैसे भी नाड़ देने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है जी, ठीक बहुत बढ़िया काम करता है।
0: ठीक ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब, एक थन में दिक्कत आई और जब ध्यान नहीं रखा तो दूसरे थन में भी दिक्कत
1: वो
0: आ गई।
1: इसीलिए आती है ना,
0: हाँ
1: कि वो ठाण में कचरा काट दिया आपने,
0: हाँ
1: आपने दूध निकाला और पशु बैठ गया, तो जब आप 50-60 बार दूध को निकाल रहे हो तो थन में जो नीचे वाल्व है, स्फिंक्टर बोलते हैं,
0: जी
1: वो थोड़ा खुला रहता है,
0: हाँ
1: और वो नीचे बैठा तो वो जैसे पानी का नलका चला जाता है ना, वापिस हवा खींचता है, ऐसे हो, यदि वो पहले वाला रोग का वहां पड़े है ठाण में, वो उसके लग गया तो वो दूसरे थन में जाएगा।
0: ठीक बात है। एक बात और
1: एक और
0: है।
1: पशुपालक हमारा भाई गलती करता है,
0: अच्छा
1: जो रोग वाला थन है
0: हाँ
1: उसको हमेशा आखिरी में निकालना चाहिए। आपने शुरू में गंदे वाले को पकड़ा रहा, आपके हाथ ही का लग रहा है वो, जो भी उसमें बीमारी है, और
0: जी
1: फिर आप दूसरे वो पकड़ रहे हो तो आप भी फैला रहे हो उसको काम का।
0: ठीक बात है।
1: आप दो दो थन पकड़ते अपन, पहले
0: हाँ
1: स्वस्थ वाले हिस्से को आप दूध खाली करिए, बीमार वाले को बाद में, और दूसरे पशु पे जाने से पहले अपने हाथ साबुन से धो लीजिए। हाँ
0: हाथ धो लीजिए, अगर किसी दूसरे पशु का दूध निकालना है तो हाथ साफ
1: हाथ
0: करने
1: साफ
0: पड़े।
1: होने चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक बात है। चलो फिर ये तो बात आ गई। एक बात और है कि पशु का दूध काट लिया, स्वस्थ है पशु, उसके बाद फिर जो कराव है कि वो बैठ नहीं देना चाहिए, कितना टाइम नहीं बैठने दे?
1: 10-12 मिनट
0: अच्छा
1: लठ लेके बैठने की जरूरत नहीं, नजदीक
0: हाँ
1: पशु की आदत है उसको, कोई जो उसके शौक की चीज है, बिनोड़ा है, खड़ है, आटा है, बेसन है,
0: हाँ
1: आप थोड़ा बाद में एक चुटी वो मिला दो, उसके लगा रहेगा, इतने 10 मिनट हो जाएंगी, बात खत्म
0: लोभ दे दे उसने के बाद।
1: बस।
0: हाँ खड़ा रहो।
1: हाँ, वो कारण वो ही है कि जो जितनी आधा मतलब 8-10 मिनट दूध निकाल रहे हो तो थन नीचे से थोड़ा खुला रह जाता है,
0: हाँ
1: वो कंप्लीट बंद नहीं हो पाता,
0: जी
1: तो वो नीचे बैठेगा, उसमें पेशाब है, गंद है, कुछ भी है, वो उसको खींचेगा, तो वो बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं,
0: जी
1: वो मौका नहीं देना चाहिए। हाँ
0: अच्छा डॉक्टर साहब, थण पहले धोए हैं, पहले तो चलो उनके रेत माटी लाग रही है उसके हिसाब से धोना दाना ठीक है, अच्छी बात है, पोसा ले हैं, बाद में कुछ भाई थन धोंदे नहीं कि धोना जरूरी है?
1: धोना चाहिए, अच्छा है, उसमें हल्की सी एक दो दाने लाल दवाई के डाल के उससे धो दो तो और भी बढ़िया है,
0: अच्छा
1: क्योंकि उसके जो लाड़ लगी रहेगी या
0: हाँ
1: दूध लगा रहेगा तो उस पर मक्खी बैठेगी, नहीं
0: हाँ
1: समझे आप, उसमें चिकनाहट है, मिट्टी को पकड़ेगा, तो
0: जी
1: उसमें रोग बढ़ने के चांस बढ़ते हैं।
0: जी फिर बात आवे है छोटे जो काटड़ू बाछड़ू हमारे द्वारा, इवन में केवल है कि एक के बात हमारे ध्यान में आओ है कि जब 10-12 दिन का होले है फिर इसकी या कीड़े की दवाई दे दे कि सारे काटड़ुआ के बछड़ुआ को हुए हैं कीड़े अक ना भी होंगे?
1: ऐसा है, दवाई जरूर देनी चाहिए,
0: अच्छा
1: चाहे है कीड़े उसके पेट में चाहे नहीं है।
0: ठीक बात
1: ये जो कीड़े की दवाई है जो छोटी उम्र में दी जाती है ना, ये ऐसी इसकी दवाइयां ऐसी होती हैं जो शरीर में नहीं जाती,
0: हाँ
1: पेट में कोई उसके रेंज का कीड़ा मिलेगा उसको लेती हुई, उसको बेहोश करती हुई बाहर निकल जाती है,
0: अच्छा
1: शरीर में नहीं चढ़ती उसका।
0: हाँ।

0: कोई नुकसान नहीं है।
1: अच्छा,
0: कुछ दवाइयाँ ऐसी है ना जो कि ब्लड में भी सोख, आंतों से सोख ली जाती हैं,
1: हाँ,
0: फिर वो किडनी में जाएगी, वहां से सफाई होएगी, तो खामखा की दवाई दोगे तो किडनी खराब करेगी,
1: जी
0: लीवर खराब करेगी, तो वो इस इन दवाइयों में नहीं है, ये पेट तक ही संबंधित है। यदि उसके अंदर कोई कीड़ा पड़ा है उसको बेहोश करेगी या मारेगी और उसको गोबर के जरिए बाहर कर देगी, तो
1: अच्छा,
0: उसका कोई नुकसान नहीं होता।
1: कई दिन बाद दिन में
0: इसका ऐसा है, सबसे पहली खुराक आज साइंस ये कहती है।

0: भाई टीका मैंने नहीं लगाना था,
1: हाँ
0: और एक बार उसको आदत पड़ गई तो यही चीज दिमाग से जब अपन थड़ू को छेड़ते हैं या बच्चा लगाते हैं या पानी के छापके मारते हैं
1: हाँ,
0: तो उसको सेंस जाता है दिमाग पे, और दिमाग पे ग्रंथि होती जो यही पावशनी वाली दवाई दिमाग छोड़ता है
1: जी
0: और वो तुरंत वो असर करता है, और आपने बाहर की चीज देने लग गए तो उसको तो फिर बनाने की जरूरत ही नहीं, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, रुक जाएगा,
1: जी
0: तो वो आदत डाल रहे आप उसको खाम खा के।
1: अनबोल धन है, वो कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन उसके साथ है हमने को इसका जातीय कर रहे हैं,
0: खिलवाड़ कर रहे हैं
1: जी
0: अपने लालच में,
1: अपने लालच में।
0: और ये आदमी जो रेडीमेड वाला जो है ना, ये जो ऑक्सीटोसिन है
1: हाँ।

0: सिख धरती ना दिखाइयो, कहने का मतलब यो
1: ये
0: है।
1: बात। तो डॉक्टर साहब कौन दिखाऊं मैं, फिर मेरी बात सुनो पूरी बात। जिसरा जब बने हो तो वो तो थनिया पा रहा है, उसमें गलत थनिया कौन दिखा रहा खेलवा।
0: मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। 6 साढ़े 6 महीने की गद्दी पाड़ती है
1: हाँ
0: वो तो एक मोटी निशानी है यार। फिर भी आपको शक है तो अनुभवी से चेक कराना, खाली पेट, भरे पेट
1: हाँ
0: मत ले
1: हाँ
0: जाना। वो डॉक्टर को मदद करता है खाली पेट।
1: हाँ थे डॉक्टर साहब बताऊं के, आज तो 10 दिन पहले थोड़ी ही अचटपटी चटपटी थी।
0: हाँ
1: हाँ खुल मतलब बाल वादी कौन
0: हाँ
1: दे,
0: उम्मीद तो यही है कि
1: जाबन
0: आपकी
1: गेरा
0: जो
1: भी कौन दे, खाली
0: लग तो यही रहा कि आपकी जोटी खाली है, ये ज्ञापन शायद है ही नहीं। हाँ
1: है ना। कोई
0: ज्यादा चांस तो यही है। हाँ जी,
1: नुकस है बोले इसका देखा को नहीं गैल
0: ना
1: कोई
0: कोई
1: अभ्यावर
0: कोई
1: जो
0: वाले
1: देख
0: वैद्य जी
1: सकता।
0: भाई की बात मत मानो। शक है तो डॉक्टर से चेक कराओ, ढंग के आदमी से, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब है उनसे बात चेक करवाओ
1: अच्छा
0: आप। शक में मत रखो ना आप। या कोई कॉलेज नजदीक है तो अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड मशीन भी बता देती बहुत बढ़िया।
1: अच्छा
0: हाँ
1: ना नजदीक तो रहे दादरी से, दादरी में साधन को नहीं।
0: दादरी में पता करना पड़ेगा, जो आपका दादरी का मेन हॉस्पिटल है वहां डॉक्टर साहब से बात करनी पड़ेगी। हाँ
1: अच्छा
0: दादरी कर लो बात, ना बने बात तो थोड़ा सा और देख लियो, कितने दूसरे बड़े शहर में पा पता जाएगा। होता है कि भाई ये डॉक्टर ठीक जी
1: है,
0: इलाके में आइडिया होता है, आप उनसे खाली पेट चेक करवा लो।
1: डेढ़ सब है सवा तो थम लग रही है 30 तारीख पे।
0: अच्छा जी,
1: और उसमें जीव कि मैं मन ले खरीदू देवा कम
0: हाँ
1: सिकड़ा चकड़ा थोड़ा बहुत देश का,
0: क्या देना है?
1: मतलब कोई तेल तेल वगैरह देश
0: हाँ
1: का
0: बिल्कुल दे
1: के।
0: सकते हो, क्यों नहीं दे सकते, दे सकते हैं।
1: अच्छा कितना
0: हाँ
1: कितना ध्यान कितना
0: ब्याई
1: दिन में
0: ब्याई
1: दे।
0: कितने दिन की है पहले ये बताओ मेरे को।
1: ब्याई तो वह है अगस्त में ब्याई थी।
0: अगस्त में तो 4 महीने हो गए और 4 या 8 9 महीने की ब्याई होगी। हाँ
1: हाँ और 30 जनवरी नाक गई हुई थी।
0: ठीक है, हाँ मतलब चौथा लग गया।
1: हाँ
0: हाँ तो फिर भी यदि आपको थोड़ा बहुत दूध की मात्रा यदि बढ़ा सकती तो एक पाउडर बताता हूँ, वो दे सकते हो आप इसको। एक
1: अच्छा
0: लैक अप पाउडर आता है, लैक अप
1: हाँ लैकअप
0: वो आप 1.5 किलो आएगा, 100 ग्राम रोजाना ये दे के देख लो, जब गुंजाइश होगी तो इससे थोड़ा बहुत आधा 1 किलो दूध और बढ़ जाएगा।
1: अच्छा
0: हाँ
1: देता है यार डॉक्टर साहब। एक भी न की हुई ने जब यह एक खड़ा गई थी ना पहले तो दोनों टाइम दिया करती भैया
0: हाँ ठीक है
1: नहीं होना।
0: ठीक है जी। डॉक्टर साहब समय का तो वाव है, लेकिन एक बात अधूरी छूट गई थी, उसने पूरा करेंगे। जिकर चल रहा था कि घाव पे कपूर भरते हैं, आपने कहा था ऊपर तो बंद कर दो, क्या वो शरीर में अंदर जाकर कोई नुकसान ना तो
1: कोई
0: नहीं कर नुकसान नहीं सकता? कोई नुकसान
1: करेगा,
0: नहीं
1: कोई
0: करेगा,
1: नुकसान नहीं।
0: बाकी दवाई ते कपूर तो जिस तरीके तो उसके वो घाव।
1: जो अपना घी ताया नहीं है देसी,
0: हाँ
1: ताया घी भी कीड़े नहीं छोड़ता,
0: अच्छा वो भी लगा सके,
1: वो
0: वो
1: लगा
0: तो
1: सके।
0: और बढ़िया, कति दिखता ना हो, बदबू भी ना हो।
1: हल्दी मिला लो तो और अच्छा है, उसमें
0: अच्छा
1: दोनों काम हो जाएंगे, एंटी
0: और
1: एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल
0: घी
1: भी
0: में
1: है,
0: हल्दी मिलाकर घाव में लगा
1: लगा
0: दो।
1: दो, दोनों काम हो जाएंगे।
0: ठीक है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब बहुत सारे फोन आए हैं भाइया के, अपनी समस्या बताई है, समाधान भी उनकी दिया है, उम्मीद करा हाँ कि उनकी समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा। डॉक्टर सी आर चौधरी जी आप स्टूडियो में आए, आपने भैया थी इतनी बढ़िया सलाह दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद भाई जी।
0: पशुपालक भाइयों आज अपना कार्य

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इसके गीत के साथ, जिसे लिया है फिल्म दीवाना से। आवाज़ें हैं अलका याग्निक, विनोद राठौड़ की। गीत को लिखा है समीर ने, संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

आइए सुनते हैं साधना सरगम के स्वर में हम हैं राही प्यार के इस फिल्म से ये गीत। गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

कुमार सानू के स्वर में आइए सुनते हैं अगला गीत। बोल लिखे हैं समीर ने, धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने और फिल्म का नाम है दिलवाले।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं गीत। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है मजरू सुल्तानपुरी ने, और इस फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे ये गीत अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण के स्वर में था। फिल्म का नाम था लाल दुपट्टा मलमल का। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे आनंद मिलिंद। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। आवाज लता मंगेशकर की है। गीत को लिखा है देव कोहली ने, संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने।

श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं शान, कैलाश खेर और साथियों की आवाज़ में फना फिल्म से ये गीत। गीतकार हैं प्रशून जोशी और संगीतकार हैं जतिन ललित।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक गीत। फिल्म का नाम है टॉयलेट एक प्रेम कथा। आवाजें हैं सोनू निगम श्रेया घोषाल की, गीतकार हैं सिद्धार्थ और संगीतकार हैं विक्की प्रसाद।

आइए सुनते हैं आशा भोसले किशोर कुमार के स्वर में सीता और गीता फिल्म से ये गीत। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

आइए अब आपको सुनवा रहे हैं विनोद राठौड़ पंकज उधास के स्वर में बाजीगर फिल्म से ये गीत। रानी मलिक ने बोल लिखे हैं और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

श्रोता अब आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति और फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आवाजें हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार जतिन ललित।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे कलाकार रहेंगे सुरेंद्र शर्मा।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट

0: एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
2: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स के रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: www.newsone.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने

Spotlight. मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक फिल्म से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपको सुनवाएंगे फिल्म आवारा से कुछ गीत। तो आइए सुनते हैं पहला गीत। आवाज़ है मुकेश कुमार की।

0: अभी आपने सुना मुकेश कुमार की आवाज़ में ये गीत, और इसी गीत के साथ एक फिल्म से कार्यक्रम यही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुने आवारा फिल्म के कुछ गीत। गीतकार थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है नाटक दुनियादारी।
1: दुनियादारी श्रीमती आशापूर्ण देवी की बांग्ला कहानी एक टू और भावे का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। तो सुनी नाटक दुनियादारी।

0: स्वप्ना, ओ स्वप्ना, अरे भाई सुनो जरा, यहाँ आओ जल्दी से।
1: चिल्ला तो ऐसे रहे हो जैसे कोई खजाना मिल गया हो, क्या है?
0: लो ये चिट्ठी देखो।
1: किसकी है, कहाँ से आई है?
0: विधु मौसी की है, पठानकोट से।
1: पठानकोट से?
0: हाँ, लिखा है बहुत दिनों से सबको देखा नहीं है, बहुत इच्छा हो रही है सबसे मिलने की, और भी कुछ काम है सो आ रही है, हमारे यहाँ ठहरेंगी।
1: क्यों, हमारे यहाँ क्यों ठहरेंगी? हमारे पास जगह कहाँ है इतनी?
0: स्वप्ना,
1: छोटा सा तो मकान है, और उनके अपने इतने रिश्तेदार यहाँ मौजूद है, फिर हमारे यहाँ क्यों ठहरेंगी वो? सुनो, ये तुम्हारी माँ उनकी चचेरी बहन ही तो थी ना।
0: तो क्या हुआ, इस दुनिया में कौन अपना होता है, कौन पराया, ये तो मानने पर निर्भर करता है। जिसे दिल से चाहो उससे कुछ भी रिश्ता ना होते हुए भी वो अपना होता है, और जिसे ना चाहो वो सगा रिश्तेदार होते हुए भी पराया हो जाता है।
1: हाँ हाँ, बहुत देखे ऐसे रिश्ते।
0: अगर ऐसा ना होता तो विधु मौसी चचेरे भाइयों के यहाँ कैसे इतनी बड़ी जिंदगी काट पाती?
1: इसके अलावा उनके पास चारा क्या था?
0: अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, विधु मौसी से वहां भी सबको बहुत स्नेह था, कभी किसी ने उन्हें भार नहीं समझा। इसका कारण था सबके प्रति उनका प्यार और निस्वार्थ सेवा भावना।
1: आए हाय, बड़ा गुणगान कर रहे हो मौसी का।
0: क्यों नहीं करूंगा, विधु मौसी की वजह से ही तो बचपन में मामा मामी के यहाँ रहना मुझे कितना अच्छा लगता था। वहां उन्हीं के हाथ नहाता था, खाता था, और उन्हीं के पास कहानी सुनते सुनते सो भी जाता था। विधु मौसी के उस निश्चल स्नेह को क्या कभी भुलाया जा सकता है?
1: तो ठीक है, अब उतारो कर्जा उनके स्नेह

0: नहलाओ धुलाओ, खिलाओ पिलाओ, आराम से रखो उन्हें। आराम पाकर जम गई तो आसानी से वो यहाँ से हटेंगी नहीं, कह देती हूँ।
1: अरे इस तरह क्यों बोल रही हो?
0: क्यों बोल रही हो?
1: विधु मौसी अब वो बेचारी गरीब विधवा नहीं रही जो दूसरों के अन्न जल पर पला करती थी, अब तो वो खासी पैसे वाली हो गई हैं। उनका बेटा अमल पठानकोट में कंबल का बहुत बड़ा व्यापारी है।
0: इन गप्पों पर तुम ही विश्वास कर सकते हो, मैं नहीं। क्या किसी ने पठानकोट जाकर देखा है ये सब?
1: हाँ, वहां जाकर तो किसी ने नहीं देखा।
0: तो जितनी अफवाह है ना, बात इतनी नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। ऐसी बातों पर आंख मूंद कर ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए।
1: तो अब क्या किया जाए?
0: मेरी मानो तो फौरन एक पत्र उन्हें लिख दो कि हमारी मेहरी बीमार है, नौकर भाग गया है और रसोईया भी अपने घर जाने वाला है।
1: हाँ?
0: और साथ ही कि तुम्हारी बहू की तबीयत भी खराब है। ऐसी हालत में मौसी तुम्हारी खातिरदारी ठीक तरह से तो हो नहीं सकेगी।
1: वो
0: और ठीक से खातिरदारी ना कर सकने पर मुझे बहुत दुख होगा, इसलिए मौसी इस बार यहाँ ना आओ तो अच्छा होगा। सब ठीक ठाक होने पर आने के लिए खुद चिट्ठी भेजूंगा।
1: नहीं नहीं इतना सफेद झूठ तो मुझसे ना लिखा जाएगा।
0: अरे
1: अरे भाई, अब आ ही रही हैं तो आ जाने दो, क्या हो जाएगा अगर एक दो दिन यहाँ रह गई तो?
0: ओ, अब कैसे बताऊं तुम्हें कि क्या हो जाएगा? तुम्हारी मौसी है इसलिए जो जी में आए करो, मैं कौन होती हूँ कुछ कहने सुनने वाली, मगर बाद में मुझसे मत कहना।
1: स्वप्ना, ओ स्वप्ना, सुनो तो स्वप्ना।

0: पहले चीथड़ों की गठड़ी लिए चली आई, न ट्रंक न सूटकेस। ऐसे ही होते हैं पैसे वाले लोग क्या, अपनी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं उन्हें। हे भगवान जाने अब कितने दिन जमेंगी यहाँ।
1: मेरा तो ख्याल था।
0: क्या ख्याल था आपका है? कि नौकर चाकर फौज फाटा के साथ मोटर बग्घी पर आएंगी तुम्हारी मौसी।
1: अब क्या बताऊं,
0: मैंने पहले ही कहा था सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब देख लिया ना अपनी आंखों से। अच्छे दिन आ जाने पर क्या कोई इसी तरह फटे पुराने कपड़ों की गठड़ी लिए पठानकोट से कलकत्ता तक आता है? और हाँ, सिर्फ दो दिन रुकने के लिए इतना प्यार, इतनी खुशामद जताते हुए पत्र लिखता है।
1: कह तो ठीक रही हो, अच्छे दिन आने पर भी इतना नम्र रह पाना कहाँ संभव है। अरे भाई, नम्र बने रहने की भला जरूरत ही क्या रह जाती है।
0: और फिर ये भी सोचा है आपने, मिलने जुलने के लिए रोज मेरी फैशनेबल सहेलियां यहाँ आती रहती हैं, उनके सामने सिर्फ एक धोती पहने अपना मोटा काला कलूटा भद्दा शरीर दिखाती आकर खड़ी हो जाएंगी तो कौन रोकेगा उन्हें।
1: अरे हाँ, समस्या तो होगी।
0: और इन देहाती बुढ़ियों का क्या भरोसा, प्यार उमड़ा तो सबके बीच बहुरिया आई बहुरिया की रट लगा देंगी। और कौन जाने, सनक में मेरी सहेलियों से बात ही करने बैठ गई तो उनके गवारू बातों से सबके बीच मेरी कितनी बेइज्जती होगी।
1: मैं तो सोचता था कि सुदूर पठानकोट में रहकर काफी सलीकेदार हो गई होंगी, लेकिन इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहीं पॉलिशदार दरवाजों पर पान खाकर उंगली का चूना पहुंच देंगी, या फिर कहीं गंदा गमछा सुखाने के लिए डाल देंगी, मतलब अच्छा खासा सरदर्द।
0: एक सरदर्द और होगा इनके साथ।
1: वो क्या?
0: विधवा, और वो भी छुआछूत वाले पुराने विचारों की। इनके खाने पीने में बड़ी झंझट होगी। हाँ, तुम्हारी मौसी के लिए रात को पूड़ी नहीं तो कम से कम पराठा तो चाहिए ही, और इसके अलावा दशमी द्वादशी व्रत वगैरह।
1: लगता है सचमुच मुझसे गलती हो ही गई।
0: और नहीं तो क्या,
1: तुम्हारी बात मानकर उसी समय उन्हें ना आने के लिए पत्र लिख देना चाहिए।
0: मानी भी है कभी तुमने मेरी।
1: खैर, अब क्या किया जा सकता है, अब आ ही गई हैं तो भगा तो सकते नहीं। जाओ, उनके खाने पीने का जो कुछ हो सके इंतजाम करो।
0: हाँ हाँ, नहाने के बाद शरबत वगैरह तो पिएंगी ही तुम्हारी मौसी। बेटे के घर जाकर चाय वाय पीने की आदत तो नहीं पड़ गई मौसी की?
1: अब मैं क्या बताऊं, ना हो तो पूछ कर देख लो।
0: अजी फिक्र क्यों करते हो, मैं तो सब पूछ लूंगी। मौसी, बेटे के पास रहकर रबड़ी राजभोग का नाश्ता करने की आदत पड़ी या नहीं? और मौसी।

0: शरबत सिर्फ मिस्री का ही चलता है या उसमें बादाम पिस्ते की भी जरूरत पड़ती है?
1: पूछ लेना। वैसे विधु मौसी का जो रहन सहन दिख रहा है उससे तो विश्वास ही नहीं होता कि अमल ने कोई खास तरक्की की होगी।
0: मैं भी तो यही कह रही हूँ। देखो जी, अगर वो ज्यादा आराम सम्मान पा गई तो कुछ दिन जम कर यही रहेंगी, इसलिए शुरू से ही ऐसा भाव दिखला देना ज्यादा अच्छा है जिससे उन्हें जमने का मौका ही ना मिले। देखो, ज्यादा प्यार व्यार दिखलाओगे ना तो आगे का खर्च नहीं चला पाओगे, समझ लो ये।
1: अरे मुझे क्या समझना है, तुम जैसा ठीक समझो करो।
0: अच्छा ठीक है, इस वक्त मैं चाय और बूंदी के लड्डू दिए देती हूँ, ठीक है? हमारी खातिरदारी विधु मौसी को पसंद ना आए यही बेहतर होगा।
1: तुम्हें दुनियादारी का ज्ञान तो काफी अच्छा है, ज्यादा खातिरदारी से उनके यहाँ जम जाने का खतरा है। ठीक ही तो कह रही हो। अच्छा भाई, इस समय तो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जैसा हो तुम संभाल लेना, मैं जाता हूँ।
0: ठीक है।
2: बाबू बाबू, सुकुमार ऑफिस चला गया क्या?
0: हाँ मौसी, आपने स्नान ध्यान कर लिया?
2: हाँ बहू, वो तो हो गया।
0: ठीक है, तो फिर चलिए नाश्ता कर लीजिए।
2: नाश्ता? अच्छा चलो चल। बहू, तुम्हारी तो ब्याहने लायक एक बहन भी होगी ना?
0: हाँ है तो। क्यों?
2: शादी तो नहीं हो गई?
0: नहीं अभी तो नहीं।
2: अच्छा, तो देखने में कैसी है?
0: रंग मुझसे ज्यादा साफ है।
2: अच्छा,
0: नाक नक्शे बहुत तीखे हैं, खूब सुंदर है। लेकिन मौसी, आप ये सब क्यों जानना चाहती हैं?
2: अब क्या बताऊं बहू, चोर की नजर गठरी पर। बस अब लड़के की उम्र तो बढ़ती ही जा रही है, उसे गृहस्थ बनाने के लिए अब मेरा मन बहुत ही उतावला हो उठा है।
0: ओ ऐसा?
2: हाँ बहू, अब तुम्हें साफ साफ ही बता दूं, यहाँ मैं लड़की ही देखने आई हूँ।
0: अच्छा,
2: लड़की के बहनोई वहाँ पठानकोट में ही रहते हैं, हमारे पड़ोस में ही। उन्होंने ही बात चलाई थी, चिट्ठी पत्री तो सब हो चुकी है, अब तो बस लड़की देखनी है, इसीलिए तो मैं यहाँ तक आई हूँ।
0: तो फिर जरूर देखा ये लड़की मौसी।
2: लेकिन बहू, तुम्हारी जैसी सुंदर और अच्छी बहू पाकर एक बार तो इच्छा यही हो रही है कि तुम्हारी बहन से ही क्यों ना कर लूं।
0: मेरी बहन से?
2: हाँ।
0: ये क्या कहती हूँ मौसी, ऐसे में भी क्या रिश्तेदारी हो सकती है?
2: अरे क्यों नहीं हो सकती बहू, अरे एक घर में तो दो रिश्तेदारी होंगी नहीं। अरे मेरे साथ तुम लोगों का स्नेह संबंध भले ही कितना भी हो, पर कोई सीधी रिश्तेदारी तो है नहीं। और फिर तुम्हारी बहन को देखने में बहुत दोष ही क्या है?
0: चलिए मान लिया कि मेरी बहन को देखने में कोई दोष नहीं, मगर देवर जी पढ़े लिखे कहाँ तक हैं, ये भी तो जानू जरा।
2: भाई अमल बेचारा ज्यादा तो पढ़ लिख नहीं पाया, वही न जाने वो कौन सी क्लास पास किए था उसने, उसके बाद तो घर पर ही काफी पढ़ा लिखा है। पर बहू, उस समय परीक्षा के लिए रुपए भी तो नहीं थे, इसीलिए तो दुख से देश गांव छोड़कर।
0: फिर जिस लड़की की खबर पाकर यहाँ आई है ना मौसी, आप उसे ही देख लें। सच बात तो ये है मौसी कि मेरी बहन तो बहुत ही निराला स्वभाव पाकर इस दुनिया में जन्मी है।
2: अच्छा?
0: हाँ, उसके विचार में पति अगर ऐसा न हो कि जिस पर कुछ गर्व किया जा सके तो फिर शादी का कोई मूल्य नहीं। खुद भी एमए पास है वो।
2: लेकिन बहू, मैंने तो सुना है अभी जिस लड़की को मैं देखने आई हूँ ना, उसने भी बहुत सी परीक्षाएं पास की हैं।
0: की होंगी, अब इस बात को छोड़िए। अब मौसी ये बताइए कि रात को आप खाती क्या है?
2: अरे बहू,
0: चना चबेना या दूध मिठाई?
2: अरे बहू, मुझ विधवा के खाने पीने के लिए बेकार का झंझट क्या करोगी? मैंने तो जीवन भर दूसरों की गृहस्थी में अपनी उम्र काटी है बहू, इसलिए मेरा क्या है? है बहू, जो तुम्हें सुविधा हो ना वही दे देना।
0: नहीं नहीं, वो सुविधा सुविधा की बात नहीं है मौसी, वो बात ये है कि यहाँ रसोई में मांस मछली पकती है,
2: तो
0: अब अगर रसोइये को दोनों वक्त अलग रसोई में दो तरह की रसोई

0: की बनाने के लिए कहूंगी तो वो तो काम छोड़कर भाग जाएगा मौसी।
1: बहू नहीं नहीं नहीं, अलग से कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। ना ना ना, अरे मेरा काम तो चना चबेना से भी चल जाएगा बहू। देखो तुम बिल्कुल परेशान ना हो बहू, बिल्कुल परेशान।
0: ठीक है मौसी, फिर रात को आपके खाने के लिए चने चबेने का इंतजाम हो जाएगा।
1: बिल्कुल ठीक है बहू, बिल्कुल ठीक है।

0: बहू, अरे बहू तुम भी चलो ना।
1: कहाँ? अरे वही लड़की देखने।
0: बहू अब मेरी आंखें तो बुढ़ापे के कारण ठीक ठीक काम नहीं करे हैं। तुम लोगों की आंखें तेज हैं, नए जमाने की हैं, सब कुछ ठीक ठाक से देख लोगी, बातचीत भी कर लोगी।
1: देखो मौसी, जब तब जहां तहां जाने आने की मेरी आदत नहीं है, और फिर ढेरों काम पड़े हैं अभी करने को, मैं कैसे जा सकती हूँ भला?
0: अच्छा अच्छा तो रहने दो बहू, रहने दो, सुकुमार को लेकर ही चली जाऊंगी मैं। सुकुमार को पता ठिकाने वाला कागज दिया था मैंने, तो वो कह रहा था कि जो पता लिखा है ना उसमें, उसके हिसाब से तो वो राजमहल जैसा घर है, नामी गिरामी आदमी का मकान है।
1: अच्छा हाँ, अब पूछती हूँ जाकर उनसे कि किसके यहाँ की लड़की है। क्यों जी, सुनती हूँ भाई के लिए लड़की देखने मौसी के साथ तुम किसी राजमहल में जा रहे हो?
2: हाँ, पता तो जिस बड़े एडवोकेट का है उनका मकान भी राजमहल जैसा ही है, लड़की किसकी है ये बात मैं नहीं जानता, मौसी भी नहीं बता सकी। अरे वो तो हमेशा की ना समझ है ना।
1: पर ना समझे की भी तो सीमा होती है। पता है पहले तो मेरी बहन के साथ अपने बेपढ़े लिखे गवार बेटे की शादी का सपना देख रही थी, और फिर मुझसे लड़की देखने जाने के लिए कहने लगी।
2: तो क्या हो गया, चली चलोगी तो क्या कोई हर्ज हो जाएगा?
1: क्या कहा तुमने? हाँ हाँ, तुम्हारे सिवाय ऐसा कह कौन सकता है, उन्हीं ना समझ मौसी की भांजी हो ना तुम। लेकिन जैसा मैं सोचती हूँ, ये लड़की वकील साहब की रसोईया की होगी, या गले पड़े किसी गरीब रिश्तेदार की होगी,
2: ये सब मुझे नहीं मालूम।
1: आए हाय, वैसे इतनी जरा सी बात मालूम करने के लिए ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर तुम्हें कह भी क्या सकती हूँ। हाँ इतना जरूर कहूंगी कि दया करके अब उनके सामने मुझे साथ चलने के लिए न कहना।
2: अच्छा अच्छा, अब बस भी करो, इतना सुन लेने के बाद भी क्या किसी की हिम्मत हो सकती है जो तुमसे जाने को कहेगा?
0: देखिए आए बहू, देखिए आए, लड़की तो बहुत ही अच्छी है, एक अच्छा सा गाना भी सुनाया उसने, और माँ बाप वो तो बहुत ही अच्छे हैं बहू, तनिक भी अहंकार घमंड नहीं है उनमें।
1: अहंकार घमंड तो पैसे वाले करते हैं मौसी, उन्हें क्या होगा।
0: अरे बहू, पैसे रुपए की बात तो सुकुमार ही बता पाएगा। हाँ घर मैंने जरूर देखा उन लोगों का, अरे बहू बड़ा ही शानदार घर है, दो दो दरबान तो पहरा दे रहे थे दरवाजे पर।
1: अच्छा,
0: कई गाड़ियां भी खड़ी थी वहां।
1: अच्छा हाँ, ये लड़की किसकी है?
0: अरे बता रे सुकुमार, ये सब तो तू ही बता सकता है बेटा, मैं भला क्या बता पाऊंगी ये सब।
2: ठीक है, तुम जाकर कपड़े वपड़े बदलो मौसी, मैं इसे बताता हूँ सब।
0: अच्छा अच्छा।
2: तो तुम ये जानना चाहती हो ना कि लड़की किसकी है? तो सुनो, लड़की ना तो घर के मालिक वकील साहब के किसी गरीब रिश्तेदार की है, ना ही उनके रसोइये की, लड़की खुद घर के मालिक वकील साहब की है।
1: घर के मालिक की लड़की है? क्या सच कह रहे हो तुम?
2: बिल्कुल सच कह रहा हूँ।
1: अच्छा अच्छा, शायद लड़की में कुछ खोट वोट होगा।
2: नहीं बिल्कुल नहीं, बीए ऑनर्स भी किया है उसने।
1: बीए ऑनर्स किया है? सुनो ये मामला क्या है, जरा साफ साफ बताओ ना।
2: आगे सब देख लोगी। ये सही है कि अमल ने डिग्री वगैरह जरूर नहीं पाई, मगर रुपए खूब कमाए हैं।
1: अच्छा।
2: काफी धनी आदमी हो गया है वहां का, और लड़की के बाप भी यहाँ के नामी रईस हैं, उन्होंने अमल की हैसियत वगैरह सब पता कर तब शादी का प्रस्ताव किया है, समझी?
0: अरे बहू बहू, अमल से मैं तय करके आई थी बहू कि अगर लड़की पसंद आ गई तो मैं बात बिल्कुल पक्की करके ही वापस लौटूंगी। अब लड़की

0: तो पसंद आ गई है। उसे आशीर्वाद देने के लिए अगर तुम लोग मुझे कुछ जेवर वगैरह खरीद दो बेटा, तो कल ये शुभ काम भी हो जाए।
1: मगर मौसी,
0: देखो बहू, अब इस बात पर तुम्हारी मैं एक भी नहीं सुनूंगी। हाँ, ये मैं पहले ही कह देती हूँ। अरे बहू, मुझ बुढ़िया की पसंद से ही तो सब काम नहीं हो सकेगा। आशीर्वाद के समय कम से कम कुछ चढ़ाऊ सेट वगैरह तो देना ही चाहिए ना। और फिर बहू, मुझे तो बस बस यही एक शादी करनी है।
1: मौसी, जेवरों के लिए रुपए आप लाई हैं?
0: और नहीं तो क्या। हाय बहू, अमल ने रुपए तो इतने दे दिए हैं कि बहू के लिए सर से पैर तक के गहने इसी समय खरीदे जा सकते हैं। मगर बहू, मैं तो वही करूंगी जो तुम लोग पसंद करोगे।
1: क्या, इतने रुपए?
0: हाँ, आए तभी तो मैं फटे चीथड़े गंदे कपड़ों की पोटली में लपेटकर बिल्कुल गरीब बनकर यहाँ तक आई थी कि कहीं चोर डाकू रुपए पैसे का संदेह न कर बैठे।
2: मौसी, अमल ने अकेले इस तरह कैसे भेज दिया आपको?
0: आए, वो तो जिद कर रहा था कि माँ, एक नौकर को साथ लेकर जाओ। फर्स्ट क्लास का टिकट भी मंगवा लिया था उसने, और मैं ही नहीं मानी, टिकट वापस करा दिया मैंने तो।
1: क्यों?
0: मैंने तो साफ कह दिया, अरे बेटा, तू लखपति हुआ है सो तो रह, फैशन कर। मैं तो जो थी वही हूँ। क्यों रे सुकू, ठीक कहा ना मैंने?
2: हाँ मासी।
0: अमल को मैंने साफ साफ कह दिया, बेटा मेरा सुकू तो अपनी गरीब मौसी को ही पहचानता है, उसी मौसी को वो प्यार करता है जिसके हाथ से वो नहाता था, खाना खाता था, जिससे कहानियां सुनकर ही वो सोता था। तब भी वो नहीं माना बहू, कहने लगा ठीक है जाओ माँ, लेकिन 3 दिन से ज्यादा की छुट्टी नहीं मिलेगी।
1: क्यों, ऐसी क्या परेशानी हो जाती है देवी जी को?
0: बहू, वो अकेला रह ही नहीं सकता है, बड़ा ही बचपना है उसमें, इसीलिए तो मैं उसकी शादी के लिए उतावली हो रही हूँ। अरे बहू, अब मेरा क्या है? अरे इस उम्र में मौत का क्या ठिकाना, क्या पता कब आ जाए।
2: ऐसा क्यों कहती हो मौसी, अभी तो तुम्हें बहुत दिन जीना है।
0: देख तो बहू, सुन तो जरा इसकी बात।
1: और क्या मौसी, ठीक ही तो कहते हैं ये, तुम्हें तो अभी खूब जीना है।
0: नहीं बहू,
1: पोते पोती को खिलाना है, उनकी शादी ब्याह करनी है।
0: बस बस बहू बस, इतनी उम्र लेकर मैं क्या करूंगी। अरे विधवा का जीवन जितना भोग लिया वही क्या कम है। बस बहू, मैं तो इस अमल की शादी कर दूं, उसकी बहू आ जाए, इस ना समझ लड़के को उसे सौंप दूं, फिर मेरी तो छुट्टी हो, ताकि इत्मीनान से आंखें बंद कर सकूं।
1: ऐसे कहां छुट्टी मिलेगी मौसी, ये कह देने से ही तो नहीं हो सकेगी तुम्हारी इच्छा पूरी।
0: बहू,
1: और हाँ मौसी, वो एक बात और है।
0: क्या बहू?
1: वो तुम मेरी बहन को देखने के लिए कह रही थी ना, तो क्यों ना से भी देख लो ना मौसी एक बार देवर जी के लिए।
0: तुम्हारी बहन? मगर तुम तो कह रही थी बहू कि तुम्हारी बहन न जाने क्या क्या पास है उसके विचार में तो।
1: छोड़िए ना मौसी वो सब बातें, लड़के लड़कियां तो वैसे कितनी कितनी बातें कहा करते हैं, उनकी बातें मानकर चलने से दुनियादारी तो नहीं चल सकती ना।
2: मगर अब और किसी को देखने सुनने का सवाल ही कहाँ उठता है स्वप्ना।
1: क्या?
2: लड़की पसंद कर मौसी वचन दे आई है, शादी पक्की हो चुकी है, कल आशीर्वाद भी हो जाना है।
1: लेकिन वो शादी ब्याह के मामले में इतनी जल्दी क्या है?
2: क्यों नहीं है, फिर जब सारी बातें तय हो गई हैं तो फिर इन बातों का क्या अर्थ? नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, मौसी को कल रात की गाड़ी से वापस भी जाना है, सुबह खरीदारी भी करनी है। मौसी, अब तुम अंदर जाकर आराम करो।
0: अच्छा बेटा।

0: ये रख दिया मौसी।
1: दो दिन कितने आनंद से बीत गए बेटी, तुम लोगों को छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता। जाते समय बार बार कहकर जा रही हूँ, अमल की शादी में तुम लोगों को जरूर आना है बेटा। हाँ, हाँ, हाँ, तुम लोग नहीं आओगे तो शादी का घर सूना सूना लगेगा। शादी का दिन तय होने पर किराए के रुपए भेज दूंगा।
2: नहीं नहीं, रुपए भेजने की क्या जरूरत है मौसी।
1: अरे क्यों नहीं है, मेरे लिए तो जैसे अमल वैसे सुकुमार। और अमल ने भले ही तुमको देखा नहीं है बहू, मगर उसके लिए तुम सगी से बढ़कर हो, ये तो मिलने पर ही जान पाओगी।
2: मगर
1: कुछ नहीं बहू, मैं अब कुछ भी नहीं मानूंगी। हाँ बिल्कुल नहीं मानूंगी। अरे ये तो ब्याह का खर्च है।
2: हाँ बहू, एक बात और कहनी है तुमसे।
3: क्या मौसी?
2: बहू कल से बहुत हिम्मत करके भी मैं अभी तक तुमसे कह नहीं पाई थी, आज गाड़ी पर बैठ जाने के बाद भी न कह पाई, तो इसका दुख मुझे सदा रहेगा।
3: क्या कहना चाहती हो मौसी?
2: बहू ये हार तुम रख लो। बहू
3: ये चढ़ाऊ हार?
2: हाँ।
3: ये मैं रख लूँ?
2: हाँ बहू।
3: मगर क्यों मौसी?
2: देखो बहू, इस तरह मेरी बात तुम काट नहीं सकोगी। कल जेवर खरीदते समय ये हार मुझे तुम्हारे लिए बहुत पसंद आया था, तुमने भी तो इसकी बहुत तारीफ की थी ना, तो मैंने तुम्हारे लिए ही इसे खरीदा था।
3: लेकिन मौसी।
2: ना ना ना, बस अब ना मत कहना बहू, वरना मुझे बहुत दुख होगा। अमल की बहू मेरे लिए बाद में है, पहले तो तुम ही हो। सुकुमार पर मेरा कितना स्नेह है ये भी क्या बताने पर जान सकोगी? अरे उसी स्नेह के कारण तो मैं तुम लोगों के पास आई थी।
3: मौसी
2: ब्याह के वक्त मैंने तेरा मुंह सस्ता सा सिंदूर दान देकर देखा था, पैसे नहीं थे ना उस वक्त मेरे पास, क्या ये दुख में मरकर भी भूल पाऊंगी? बेटी तुम्हारा सिंदूर अक्षय हो, ये तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा।
3: मौसी
2: हाँ बेटी रख लो।
0: गाड़ी चलने वाली है। प्रणाम मौसी, हम उतरते हैं।
2: मौसी जीते रहो, सदा सुहागिन रहो। जाओ जाओ,
3: अपना ख्याल रखना मौसी। हाँ
4: मौसी, चिट्ठी जरूर देना।
2: अच्छा।
4: और सुनो, और कुछ चाहिए हो ना यहाँ से तो लिख देना।
2: हाँ,
5: हाँ,
2: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ बेटा।

0: सुनो जी, अमल देवर जी की शादी में कोई अच्छी सी चीज देनी पड़ेगी। मेरी बहन के साथ अगर अमल देवर जी का रिश्ता हो जाता तो कितना अच्छा होता। तुमने ही नहीं होने दिया। अगर तुम जरा भी जोर मौसी पर डाल देते तो क्या वो मना कर पाती? क्या हुआ लगा रखी है? और कि तुम मेरी और इस तरह क्यों देख रहे हो? ओ, तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने कोई चोरी की है। क्या सब दोष मेरा ही है, उनका नहीं?
1: हाँ, उनका ही तो है, क्योंकि उन्होंने मुझे सदा ही अपने बेटे जैसा स्नेह दिया, मान सम्मान दिया, और बदले में कभी कुछ नहीं चाहा। और आज जब वो स्नेहवश हमारे पास आई तो हमने उन्हें क्या दिया? तिरस्कार है ना? क्यों अब चुप क्यों हो? अगर उनके ऊपरी आवरण पर ना जाती तो क्या ये सब होता?

अभी आप सुन रहे थे नाटक दुनियादारी, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को मंजू शर्मा का स्नेह भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आम्रपाली फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज लता मंगेशकर की है, गीत को लिखा है शंकर जयकिशन ने। सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं के द्वारा। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद असारी, गुलाब साबिर राही महराज जहां। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेकी से पत्र भेजा है द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, चेतेक बीरक और मीका बीरक।

कार्यक्रम का अगला गीत लिया है फिल्म मुगले आजम से। गीत लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत दिया है नौशाद ने और आवाजें हैं लता मंगेशकर। और सुनने की फरमाइश आप सभी श्रोताओं ने भेजी है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। डीएलएफ कॉलोनी रोहतक से पत्र आया है महेंद्र शाह, हरेंद्र शाह, जितेंद्र शाह और मानसी शाह का। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

अगले गीत की फरमाइश आप सभी श्रोताओं के द्वारा आई है। छत्तीसगढ़ बेमित्रा से हैं पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती, भाव्या सारथी और सुषमा सारथी। नवागढ़ कटई से हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी वर्मा। आप हैं संबलपुर कांकेर से फागु राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ईशिका यादव और तेजल यादव। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से पत्र भेजा है बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष ने। आप सभी ने सुनना चाहा है खानदान फिल्म से ये गीत। आवाज़ लता मंगेशकर की है, गीतकार है राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार है रवि।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आइए सुनते हैं मेरा साया फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने, संगीत दिया है मदन मोहन ने। फरमाइश आप सभी श्रोताओं की है इस गीत को सुनने के लिए। बेड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर। आप है चकला बाजार, समाना से पप्पू राजा खुशदेल, संगीता जिंदल और हसमुख जिंदल। मेहर नगर उमर खेड़ा, महाराष्ट्र से पत्र भेजा है अभिजीत गम्हानकर, सरिता गम्हानकर, प्रिंस एकांश गम्हानकर ने। और बहादुरा नागपुर से हैं वैशाली शैलेश, श्वेता सुमित अध्वनि। बदलापुर मुंबई से पत्र आया है सिद्धांत गम्हानकर और प्रणीता गम्हानकर का। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में मेरा साया फिल्म से ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं पारस मनी फिल्म से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार हैं अरशाद भोपाली और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनने की फरमाइश आप सभी श्रोताओं ने भेजी है। जरूर वरुण महाराष्ट्र से हैं बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी रजनी कार्तिक युवराज और पुणे से हैं पंकज वाड़ोदे और आर्या प्रियंका। चंडीगढ़ से पत्र आया है सतीश अनेजा बिमला अनेजा का। मुक्तसर से हैं बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत और निशु। आप हैं नया पारा भीरई से श्री वसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज सूर्यवंशी, ईश्वर राज सूर्यवंशी, चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्राची और टीयूषी। प्रमिलागंज अलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से पत्र भेजा है बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पाया वर्मा, पायल वर्मा, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने।

कार्यक्रम का अगला गीत लिया है फिल्म हरियाली और रास्ता से। आवाज़ लता मंगेशकर की है। हसरत जयपुरी ने गीत को लिखा है, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश आप सभी श्रोताओं के द्वारा आई है। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हैं बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से पत्र भेजा है प्रकाश, बोरगांवकर सुषमा, प्रकाश, प्रांजलि और सोहम बोरगांवकर ने। गोला बाजार बक्सर से हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, प्रमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित। आप हैं धामनी मनोरा से हैं तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश पेंटर, अमोल डेरे, गुलशन डेरे, आदेश, किरण, प्रज्वल और दादुल्या। और सोमठाना मानोरा से पत्र भेजा है विशाल कवाने, ललिता पायल और तुलसी राव।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर के स्वर में। फिल्म का नाम है राजकुमार। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। फरमाइश आप सभी श्रोताओं ने पत्रों के माध्यम से भेजी है। महादेव घाट अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। भटिंडा रोड डब्वाली से पत्र आया है राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग का। आप हैं अलीका डब्वाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी।

को लिखा है और धुन तैयार की है ओपी नैयर ने। फरमाइश आप सभी श्रोताओं की है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर रेखा गगन सोनी सीता और गीता। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा इंद्रजीत कौर बेबी मनमीत मनविंदर सिंह पांधा। आप हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय उषा राय अमित कुमार राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से हैं प्रतीक राय रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुरा कला गाजीपुर से पत्र भेजा है अवधेश राय प्रीति राय और नवनीत राय ने। डाबर तालाब लोनी से पत्र आया है राजा अहमद आरिश हुसैन ईशान हुसैन मरियम और बुसरा का।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है। पटेल नगर मलोट पंजाब से हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया। आदर्श गांव

बलियाली जिला भिवानी हरियाणा से पत्र भेजा है दर्शन लाल बंसल, सुदेश रानी बंसल, प्रवीण कुमार बंसल, ममता रानी बंसल, कमल कुमार बंसल, गर्वीश और तमन्ना बंसल ने। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंद संधु, महावीर संधु, गुरचरण गरोवर और रमेश मिगलानी। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गविया और सुचा पाठक। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म यादगार से ये गीत, आवाज़ महेंद्र कपूर की है, गीतकार हैं दीवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। इस गीत को लिया है फिल्म काला पानी से। आवाज़ें आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की है, मजरू ने गीत को लिखा है और एसटी बर्मन ने धुन तैयार की है। इस गीत को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं के पत्र आए हैं। मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, बिमला इंदौरा, गैरी इंदौरा, विकास इंदौरा, प्रियंका इंदौरा, रमन इंदौरा, रितु इंदौरा, भविंश खन्ना, मिसेल खन्ना, किंशुक खन्ना, दीपांशी इंदौरा। दत्रेगी से हैं भागवत वर्मा, कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। आदर्श नगर मलोट से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे समझे।
2: इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज

0: कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटी। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet and future, such as climate change. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today addressed the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers meeting. He said India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism. Dr. S. Jaishankar also met foreign ministers of Iran, Malaysia, Uganda, Cuba on the sidelines of the meeting. Prime Minister Narendra Modi has said that government remains committed to improving ease of doing business and ease of living for the countrymen. In a social media post, Mr. Modi rejected a report of a

सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की सभा के कार्यक्रम यहीं संपन्न होते हैं। अगली सभा में कल सुबह 5:55 पर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।